0: दिव्य समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगी। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूल शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में, IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या को त्याग देना चाहिए और विद्या अर्जन करने वाले को सुख को त्याग देना चाहिए, क्योंकि सुखार्थी को कहाँ से विद्या प्राप्त होगी और विद्यार्थी को कहाँ से सुख प्राप्त होगा। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर में 6:35 से सुनेगा श्री रामचरितमानस गान भाग 204। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। आज इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी सुनिएगा।

सुबह 7 बजे से भोले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के, सुबह 8:15 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक, 9:30 सुबह सुनिएगा आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता परेश रावल पर। सुबह 10 बजे से आपको सुनवाएंगे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी, इसके अंतर्गत सुनेगा विधि जैन की लिखी कहानी रिश्ते, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से चित्रपट संगीत, सुबह 11:30 और रात्रि 11:30 से मैटनी शो। इसके अंतर्गत तंबाकू के सेवन से छुटकारा कैसे पाएं, इस विषय पर डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल CMO बेस्ट मुंबई से जयंत पात्रिकर की बातचीत सुनेगा प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। दिन में 12:05 से यादों की महफिल सुरीला सफर सुनिएगा दोपहर दो बजे से त्रिवेणी। सदाबहार नगमे दोपहर 3 बजे से मनचाहे गीत। दोपहर 3:30 से आप सुनवाएंगे नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक अग्नि चक्र का पहला भाग, मूल मलयालम लेखक CL जोस, हिंदी नाट्य रूपांतर PG वसुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनेगा अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की बातचीत प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनर्प्रसारण सुनेगा। तराने नए पुराने शाम 5:30 से झरोखा, शाम 6:30 से सुनेगा 6:35 से संध्या रंजन। विशेष जयमाला, इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अभिनेता पंकज कपूर, इसकी रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा शाम 7 बजे से। इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा शाम 7:45 से। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा सुनो कहानी, इसके अंतर्गत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी प्रेम का मूल्य सुनेगा वाचन अमरकांत दुबे का, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। रात 8:15 से चित्रलोक, रात 9:30 से आपको सुनाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक KK पर। रात 10 बजे से सुनेगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर रेणु बंसल का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से सुनेगा ढलती जाए रात।

भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त कर भरत जी दल बल समेत चित्रकूट की दिशा में चल पड़े हैं। राह में असंख्य जड़ चेतन जीव जिन्हें पहले श्री राम के दर्शन हुए थे अब भरत का साक्षात्कार पाकर मानो परम पद प्राप्त कर रहे हैं। किंतु भरत का प्रभाव देख देवराज इंद्र ये सोचने लगते हैं कि कहीं भ्रातृप्रेम के वशीभूत श्री राम अयोध्या न लौट जाएं और इस तरह पनी बनाई बात बिगड़ न जाए। उनकी चिंता देख देवगुरु बृहस्पति उन्हें सीख देते हैं कि श्री राम की भक्त वत्सलता और उदारता की महिमा को ध्यान में रखकर मन से इस प्रकार की कुटिलता निकाल देनी चाहिए। जो भी श्री राम के भक्तों का अपराध करता है वो उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है और इस बात को दुर्वासा से अधिक और कौन जान सकता है।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा की जा रही है। आज प्रस्तुत है राग भैरवी।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं महाराजा स्वाति तिरुनाल के हिंदी रचनाओं के बारे में कहती आती रही हूँ। आज इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी है और इसका समापन मैं राग भैरवी में एक बंदिश से करूं तो बहुत ही उचित होगा। कल भी मैंने भैरवी में महाराजा स्वाति तिरुनाल की एक रचना सुनाई थी जो भजन के रूप में था। आज जो भैरवी कृति सुना रही हूं वो दादरा ताल में है और ज़्यादा प्रचलित है। मैंने पिछले अंक में कहा था कि श्री पद्मनाभ अर्थात विष्णु महाराजा स्वाति तिरुनाल के कुल देवता माने जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वे शिव पूजा से दूर रहते थे। ये जो कृति मैं गाने जा रही हूँ न केवल काशी विश्वनाथ जी के बारे में है। स्वाति तिरुनाल कहते हैं, चलो मन तुम काशी, जहाँ सुंदर और पवित्र गंगा नदी बहती है, पंडित और साधु लोग पूजा पाठ में मग्न रहते हैं और जहाँ त्रिभुवन पालक श्री विश्वनाथ जी विराजमान हैं। विष्णु भक्त हो या शिव भक्त, स्वाति तिरुनाल कहते हैं, भजले इन दो स्वरूप, रहिए अविनाशी। तो श्रोताओं सुनिए महाराजा स्वाति तिरुनाल की भैरवी राग में रचना विश्वेश्वर दर्शन कर।

श्रोताओं, अब मैं भैरवी के दो स्वरूप दिखाती हूँ आपको, एक कर्नाटक शैली में और उसके बाद हिंदुस्तानी शैली में। तो सुनिए पहले कर्नाटक शैली में भैरवी।

श्रोताओं, पिछली कड़ियों में मैं आपको कर्नाटक रागों के बारे में और स्वाति तिरुनाल महाराजा की कृतियों के बारे में कुछ बातें बताती आई हूं। तो इस श्रृंखला का समापन यहां करते हुए मैं आपसे विनती करती हूं कि ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, ज़रूर लिख के बताइएगा। अब सुनिए एक फिल्म संगीत

0: राग भैरवी पर आधारित ये गीत था। फिल्म दूज का चांद से आवाज थी मन्ना डे की। स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग भैरवी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाज़ों में। पंचायत फिल्म के गाने के साथ शकील नौमानी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं इकबाल कुरैशी।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूं हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूं विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हां, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: थी धन्य वो उनकी जवान जो शहीद हुए
6: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से। अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसे गीत और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं SD बर्मन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गाना। इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: देखो टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमें राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में जाने अनजाने फिल्म के गाने के साथ। हसरत जयपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में रखवाला फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। आइए अब सुना जाए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में मेला फिल्म का गाना। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम है राई प्यार के। लीजिए अब सुनिए हरे रामा हरे कृष्णा इस फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आन मिलो सजना इस फिल्म से। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: 6.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि LPG का जो रिजर्व है that should be minimum 30 days with them and they are working on it and similarly for crude also we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और

0: भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर 3रा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
4: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्का

0: बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिव कुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज की त्रिवेणी में बातें होंगी आशा की, उम्मीद की। आशा क्या है? वैसे तो इसे परिभाषित करना या इसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन आशा को हम तब पहचानते हैं जब हम इसे महसूस करते हैं और जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आशा है अपने लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना

और उसे पाने की कोशिश करना। हम सभी के जीवन में आशा का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये निराशा से बचाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये एक सकारात्मक भावना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें जीवन का अर्थ, उद्देश्य और धैर्य प्रदान करती है। आशा कठिन समय में मानसिक शक्ति बनकर हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आशा एक भावना है और सोचने का एक तरीका भी। कई बार जब हम हर तरफ से थक हार चुके होते हैं, हमें आशा की कहीं कोई एक किरण कहीं ना कहीं से किसी बाहरी कारण से भी मिलती है, तब हम फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। मुश्किल हालातों से उबरने में आशा की ज्योत जलाए रखना बेहद ज़रूरी है। आशा को हमें एक इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आशा एक भावना है, एक मानसिकता है, जिसके जरिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन और प्रतिकूल क्यों ना हो, आशा एक विश्वास ही तो है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।

आशा का अर्थ है आगे बढ़ते रहना, हिम्मत बनाए रखना और जीवन के अर्थ के साथ हर मुश्किल से उबरने का रास्ता खोजना। आशा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के बहुत कठिन समय में भी सहारा दे सकती है। यदि हम किसी विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम सकारात्मक निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। कभी कभी हमारे दिलो दिमाग पर भय और निराशा आशा से कहीं अधिक आसानी से हावी हो जाती है। ये डर हमारे आशा के भाव को कमजोर करने लगते हैं। हालांकि हम अक्सर आशा को व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, लेकिन आशा को सामूहिक रूप से भी अनुभव किया जा सकता है। राष्ट्र पर जब कोई संकट का समय आता है तब आशा और विश्वास का दामन थामे रहना आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आशा हमें भविष्य के लिए बेहतर कल्पना करने और उसे पाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करके जीवन को खूबसूरत बनाए रखती है, जिससे निराशावादी सोच दूर रहती है। आशा

दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते समय यदि मन में आशा हो तो मस्तिष्क अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। आगे बढ़ते रहने की ये इच्छा शक्ति, जिसे हम उम्मीद या आशा कहते हैं, ये जीवन को गति प्रदान करती है। इसीलिए आशा को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। आशा रखने से मन मस्तिष्क बेहतर ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए कि आशा अपने आप नहीं मिलती, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है और इसे बनाए रखने के लिए हमें स्वयं से परे भी जुड़ना पड़ता है। आशा स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली औषधि भी हो सकती है। इसीलिए चाहे हम किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हों या चुनौतियों से जूझ रहे हों, पहले से कहीं अधिक आशा की ज़रूरत है ताकि हम मजबूती से टिके रह सकें। आशा की एक किरण जीवन की मुश्किलों, असफलताओं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है, जिससे व्यक्ति हार नहीं मानता। आशावादी दृष्टिकोण से जीवन में बदलाव आते हैं और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आशा हमें जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। आशा ही जीवन की वो धुरी है जिस पर सुखद भविष्य की कल्पना टिकी रहती है। ये हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां सुधर सकती हैं और आगे चलकर सब ठीक हो सकता है।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्म।
3: ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं सोनू निगम और पलक मुछाल की आवाजों में बॉर्डर 2 फिल्म का गाना।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सन 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। इससे पहले गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश था। गोवा लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों के अधीन रहा। 19 दिसंबर सन 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। गोवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ समुद्र तटों, सांस्कृतिक विविधता तथा पर्यटन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। गोवा राज्य की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको सुनवा रहे हैं पुष्पा फिल्म का गाना, जावेद अली की आवाज़, रकीब आलम के बोल, देवी श्री प्रसाद की है तर्ज़।

0: अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह की आवाज में लापता लेडीज फिल्म का गाना। गीतकार थे दिव्य निधि शर्मा और संगीतकार राम संपत। आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ये प्यारा सा गाना भी आप सुन रहे थे कलर टू फिल्म से, विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की आवाज़ें, गीतकार थे सईद कादरी और संगीतकार मिथुन। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। इसका उद्देश्य आलू के पोषण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा में उसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आलू विश्व की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है, ये हर आय वर्ग के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भारत सहित अनेक देशों में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, ये किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। आलू से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जैसा कि हम लोग रोज खाते भी हैं, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। आलू की खेती और उससे बनने वाले नाना प्रकार के व्यंजन आजीविका का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए इस वर्ष की थीम भी शायद यही बात कह रही है। इस वर्ष की थीम है वेयर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड्स फ्लरिश। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और आपको सुनवाते हैं ये

0: अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में पिंटू की पप्पी फिल्म का गाना। रमन रघुवंशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा डॉक्टर निट्स ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रश्मि रॉकेट फिल्म का गाना। आवाजें हैं भूमि त्रिवेदी और साथियों की, कौशल मुनीर के बोल और तर्ज अमित त्रिवेदी की।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए एआर रहमान और हीरल विरदिया की आवाजों में महबूब का लिखा और एआर रहमान का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम हीरोपंती 2।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश देहाती डिस्को फिल्म से दिव्या कुमार की आवाज़, प्रणव वत्स ने लिखा इसे और संगीतबद्ध किया है गणेश आचार्य ने।

0: इस गाने के साथ ही आज का चितलोक कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: सुनने वालों को नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जो सिनेमा के पर्दे पर बतौर विलेन भी नजर आए।
1: मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? हवेली पे आ जाना, कल यहां पे हजारों लोग होंगे, पूरी फोर्स बदलवा के रख दूंगा मैं, हाहाकार मचा दूंगा। हाहाकार
2: तेरे बाप कर आ जाएगा।
3: क्वाइट विक्रम, मामा ठाकुर से गलती हुई है।
2: क्या बात कर रहे सर,
1: ये बात मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा।
2: चलिए अभी दिल्ली।
0: बतौर चरित्र अभिनेता भी, बतौर कॉमेडियन भी।
4: ए खालिद भाई, मेरा नंबर है।
5: अरे यार तू दोस्त है अपन का, मैं गया तू गई की बात?
4: ना ना, दोस्त है तो घर पे आ।
5: क्या बात करता है, सिर्फ 50 रुपया, ये तो बहुत कम है यार। तू टेंशन मत ले यार, कोयला ले और 50 के आगे एक जीरो लिख डाल, 500 हो जाएगा, बात खत्म।
6: क्या 500? खालिद भाई मेरी बीवी क्या?
5: अरे सॉरी सॉरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी।
6: एक बार ये लिखने वाला खालिद भाई मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट लिख डालूंगा, देखना।
5: मेरे को मालूम है किसने लिखा है।
0: और उन्होंने रंगमंच पर भी अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं जाने माने अभिनेता परेश रावल को। हंसता हूं।

परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार जुहू में रहता था और उनका एडमिशन वहां जुहू स्कूल में करवा दिया गया। जब वो 11-12 साल के थे तो स्कूल के मंच पर अभिनय करने लगे और जुहू स्कूल की प्रिंसिपल ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने नन्हे परेश से कहा कि वो अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मंच पर वो अपनी अभिनय प्रतिभा की जौहर दिखाना जारी रख सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई इसी तरह से चलती रही। रंगमंच और पढ़ाई को किसी तरह से परेश रावल ने बैलेंस किया और फिर मुंबई के नरसी मुंजी कॉलेज में पढ़ने लगे। यहां के प्रिंसिपल ने भी परेश रावल की अभिनय प्रतिभा को समझा और उनके साथ सहयोग किया, यानी उन्हें कॉलेज के लेक्चर्स छोड़ देने की अनुमति मिल गई क्योंकि वो अपने कॉलेज के लिए थिएटर किया करते थे। परेश रावल ने अपने कॉलेज को कई प्रतियोगिताओं में जिताया। उसके बाद 1973 आया जबकि परेश रावल ने पेशेवर थिएटर ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल थिएटर के बैनर तले उन्होंने अपना पहला प्ले किया जिसका नाम था वेन छे मौत। ये वो दिन थे जब परेश फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे। वो थिएटर की दुनिया में खुश थे क्योंकि यहां उन्हें अपने मन मुताबिक एक्टिंग करने मिल रही थी। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के काम पर और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि थिएटर के अलावा फिल्मों में भी अभिनय की दुनिया का विस्तार है। और तकरीबन 4-5 साल बाद सन 1978 से 1980 के बीच परेश रावल ने यह फैसला किया कि उन्हें फिल्मों की दुनिया में जाना है। फिल्मी दुनिया में संघर्ष करना शुरू किया। श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, कुमार साहनी जैसे कला फिल्मों के निर्देशकों से उन्होंने समय समय पर मुलाकात की और बताया कि वो फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं और फिलहाल थिएटर में सक्रिय हैं। लेकिन परेश रावल का काम नहीं।

अब परेश को ये समझ में आ गया था कि फिल्मों में उनके लिए फिलहाल तो जगह नहीं है। वो थिएटर में अपना पूरा ध्यान लगा रहे थे। एक दिन की बात है, मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर में परेश रावल के

किसी नाटक का शो चल रहा था। जाने माने प्रोड्यूसर करीम मुरानी उस शो को देखने आए और उन्होंने नेपथ्य में जाकर परेश रावल से भी बात की और बाद में निर्देशक राहुल रवेल से परेश के नाम की सिफारिश की। राहुल रवेल उन दिनों फिल्म बना रहे थे अर्जुन, और सन 1985 में परेश रावल को फिल्म अर्जुन के लिए साइन कर लिया गया। शूटिंग का पहला दिन था, पहली बार परेश रावल कैमरे का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपना टेक इतनी अच्छी तरह से दिया कि निर्देशक राहुल रवेल ने कहा, परेश जी अब आप मेरी हर फिल्म में काम करेंगे। और इस तरह से परेश रावल थिएटर की दुनिया से होते हुए फिल्मों में चले आए।

धीरे धीरे परेश रावल ने फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने शुरू किए, लेकिन इन दिनों वो नाटक करते चले जा रहे थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सन 1976-77 का जमाना था। परेश रावल एक गुजराती नाटक कर रहे थे ठोकर, जो पीटर श्वाफर्स के नाटक इक्वल पर आधारित था, और इन दिनों उनकी मुलाकात हुई मॉडल और अभिनेत्री स्वरूप संपत से। परेश रावल को स्वरूप संपत से प्यार हो गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि परेश रावल का ताल्लुक एक मध्यमवर्गीय गुजराती परिवार से था और स्वरूप संपत एक अंग्रेजीदा परिवार से आई खूबसूरत मॉडल, मिस इंडिया और एक बेहद खूबसूरत नाजुक शख्सियत थी। दोनों का कहीं कोई मेल नहीं था। परेश कहते हैं कि ये उनके लिए सपनों जैसे दिन थे। आखिरकार एक दिन परेश रावल और स्वरूप संपत ने शादी कर ली।

परेश रावल कहते हैं कि फिल्मों में अभिनय के लिए अगर हिंदुस्तानी सिनेमा के कोई आदर्श हैं उनके लिए तो वो हैं बलराज साहनी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी। परेश रावल का ये भी मानना है कि अभिनय उन्हें बड़ा ही दिलचस्प करियर लगता है क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में एक जीवन में कई जीवन जीने का मौका मिलता है। अर्जुन के बाद परेश रावल को फिल्मी दुनिया में अपना नाम अच्छी तरह से कमाने का मौका मिला।

0: डेब्यू थी महेश भट्ट की सन 1986 में आई फिल्म नाम। इसमें भी परेश रावल ने विलेन का रोल किया था। इसके बाद तो परेश रावल ने कई फिल्मों में तरह तरह के रोल किए। कभी वो बतौर विलेन नजर आए, कभी चरित्र अभिनेता के तौर पर, और कभी आपको हंसाते हुए नजर आए, कॉमेडी करते हुए।
1: विश्वजीत, हाँ बोल। ए, इसमें कौन सी साड़ी पहननी है, है?
2: पता नहीं इनकी नाम भूलने की बीमारी कब जाएगी। इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या कर रहे हो?
1: अरे भाई, कल तुमने जो 15-20 साड़ी खरीदी थी ना, है ना, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि इसमें कौन सी साड़ी को इस्त्री मारनी है। डार्लिंग विश्वजीत,
2: परमजीत।
1: कौन परमजीत?
2: मेरा नाम परमजीत है जिससे तुमने शादी की है।
1: अभी अभी सोना बेटा, तुम्हारी बात को बोलो ना। अच्छा क्या बात बात में चिल्लाते रहने का है?
3: ओहो डैडी, मेरा नाम सोना नहीं मोना है।
1: ये साड़ी की उलझन में मैं इसका नाम भी भूल गया, परिमल।
4: डैडी जी, मेरा नाम परिमल नहीं, अनमोल है।
1: ए यार, तेरे को क्या हो गया? चुनीलाल?
2: मणिलाल।
1: कौन मणिलाल?
2: तोड़ा नाम मणिलाल है, मणिलाल पटेल।
1: ये नाम मैंने कब रखा?
2: बचपन से।
1: बचपन से? बचपन से मेरा ये नाम है, और मुझे अभी बताती हो तुम? ले, अभी अभी अभी मैं याद रखूंगा, मेरा नाम मेथीलाल है बस।
2: ओ जीसस।
1: जीसस, अभी तुमने बोला ना मेरा नाम मेथीलाल है, अभी जीसस।
2: गेट आउट, गेट आउट।
0: परेश रावल की सबसे मशहूर कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी। परेश मानते हैं कि हेरा फेरी की सफलता का सारा श्रेय जाता है इस फिल्म के लेखक नीरज वोरा को, जिन्होंने कॉमेडी को बड़ी अच्छी तरह से निभाया था।
5: तो भैया, आप गांव में घर है ना आपके?
6: नहीं है। क्यों
5: नहीं? क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया
6: है?
5: तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कहां कुत्ते की तरह भटकोगे।
7: देख राजू, जबान को लगाम दे, समझा?
5: देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका।
6: सच बात बोलता तो मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे दे रे बाबा।
7: आपको मुझ पे भरोसा नहीं?
5: ये इसके दिल में खोट है।
7: तेरे दिल में खोट है? मैं तो किराया देके रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता है।
5: हाँ तो मुफ्त में रहता हूँ तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ।
7: तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ।
5: हाँ तो करना तू।
7: हाँ तो तू भी करना।
5: हाँ तो कागज लेके आना।
7: तू कागज ले।
5: अरे मैं क्यों लेके आऊं?
7: मैं क्यों?
5: तुम दोनों के दोनों बाहर जाओ, पेपर लेके आओ, जाओ।
6: हे देवा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले।
5: हेलो, पेपर पे साइन किया है, इसने अभी तक नहीं किया, खोट है इसके दिल में।
7: बताओ ना, साइन कर रे बाबा, साइन कर। तू कर रे साइन, साइन कर।
8: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
7: क्या हुआ? क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया?
5: गाना? ये सब बहानेबाजी है, मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन नहीं करने वाला।
7: ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन कर ना, जल्दी साइन कर रहे, साइन कर। आपको गाना नहीं सुना दे रहा?
5: कौन सा गाना?
7: साफ सुनाई दे रहा है।
5: ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ इसका बोरिया पिस्तौल उठाओ, बाहर फेंक दो इसको।
7: ये तो साइन कर रहे, साइन कर रहे, गाने लगा ले, साइन कर रहे गाने।
9: हेलो
5: हेलो, देवी प्रसाद।
9: नहीं देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे?
5: सर वो मेरी मछली का क्या हुआ?
9: वो तो मैं खा गया।
5: खा गए?
9: हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया।
0: बतौर विलेन परेश रावल अपनी दो फिल्मों को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, एक है फिल्म डकैत और दूसरी फिल्म कब्जा। आज परेश रावल 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं, और एक कलाकार के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी कुछ प्रतिनिधि फिल्मों का चुनाव करना। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में परेश रावल ने अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बताया है। उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है केतन मेहता की फिल्म सरदार, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया था। परेश रावल से जब पूछा गया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने तैयारी कैसे की, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो वो मिल नहीं सकते थे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो परेश का जवाब था कि उन्होंने असंख्य तस्वीरें उनकी देखी और उन तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगाया कि सरदार पटेल किस तरह से बोलते होंगे, किस तरह से चलते होंगे और उनका स्वभाव किस तरह का होगा। इसके अलावा उन्होंने इस अभिनय के लिए बहुत सारी रिसर्च भी की।
10: फिर वही बात, हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। और अगर बंटवारा होना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद देश के आजाद लोग करेंगे, अंग्रेज सरकार नहीं।
0: पूजा भट्टी की फिल्म तमन्ना को वो अपनी बहुत

महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक वृहन्नला का, एक हिजड़े का किरदार निभाया था। परेश ये कहते हैं कि ऐसे किरदार भी मानवीय होते हैं, उनका अपना संघर्ष, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं और इस फिल्म के जरिए उन्होंने इस तरह के चरित्र की तकलीफों को सिनेमा के पर्दे पर जीवंत कर दिया था।

0: हीरा फेरी फिर हीरा फेरी, आंखें आवारा पागल दीवाना, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, मालामाल वीकली, गोलमाल, हलचल, छुप छुप के, भागम भाग, शंकर दादा, भूल भुलैया, वेलकम, मेरे बाप, पहले आप, दे दनादन और हंगामा जैसी ना जाने कितनी फिल्में हैं जिनके जरिए परेश रावल ने आपको हंसाया है।
1: और नाचते नाचते तुम्हारे पांव कहां पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो।
2: अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे?
1: अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और ये जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घूमर जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा?
0: सन 1994 में परेश रावल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म वो छोकरी के लिए, और फिल्म सर के लिए उन्होंने जीता फिल्म फेयर पुरस्कार।
3: हम लोगों को इतना खुश देखकर आपको अजीब लग रहा है ना? मैं बताता हूँ, बात यह है कि जब ये छोटी थी ना तो खुश रहती थी, खेलती रहती थी हाँ, लेकिन जिस दिन से इसकी माँ गई है ना, चुप हो गई है, घर एकदम शमशान हो गया था। और इतने साल के बाद आपने सर पे हाथ रख दिया, मेरे घर में जान आ गई है।
0: सन 2001 में फिल्म हेरा फेरी के लिए परेश रावल चुने गए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन फिल्म फेयर की ओर से। सन 2003 में आवारा पागल दीवाना फिल्म के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता।
1: मेरा गला बैठने को आया है? तू क्या कान दुकान पे बेच के आया है? साला बेरा, इधर कचरा नहीं डालने का? ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ। ये गुलाब वाला तेरा नाम क्या है?
4: लिसन जेंटलमैन,
1: ये साला कौन सा नाम है? समझ में नहीं आता, इधर कचरा नहीं डालने का।
4: I'm sorry.
1: अबे सॉरी क्या इंडिया समझा है? गुना करो, सॉरी बोलो।
5: क्या हुआ जी?
1: अभी ये साला घन चक्कर को मैं एक कलाक से समझा भी नहीं, थकी गया। इधर कचरा नहीं डालने का, इसको बोल इधर से कचरा उठावे वरना।
0: परेश रावल की एक महत्वपूर्ण फिल्म है अंदाज अपना अपना, जिसमें वो सलमान खान और आमिर खान के साथ नजर आए थे। परेश रावल रंगमंच पर भी सक्रिय हैं, उनकी कंपनी टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाती है और उन्होंने एक फिल्म का निर्माण भी किया है, ओ माय गॉड। ये फिल्म गुजराती के एक प्रसिद्ध नाटक पर आधारित थी।
6: किसे भेजनी है नोटिस?
7: भगवान को।
6: मिस्टर भगवान? सरनेम?
7: पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है।
6: अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। अरे ये नोटिस किसे भेजूं?
7: हाँ, लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं।
6: अच्छा है?

0: सन 2014 में भारत सरकार ने परेश रावल को पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी माने अभिनेता परेश रावल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: थी धन्य जवान जो शहीद।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूमाते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते, और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई, असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह था, इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमा

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम

दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है, जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए। दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

कमला यानी दोनों की मां रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई। जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वटवृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूं। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया, क्योंकि पहले भी सेवा तो

थी कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी, अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

0: कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश माँ की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा,
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें, pmsuryaghar.gov.in पर।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन उंगलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया। उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित, माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया, दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी। उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

0: हुजूर आप आए कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं।
1: संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

0: रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है। आइए आपको एक सूचना दे दें, अत्यधिक गर्मी

और लू से लोग बीमार हो रहे हैं। इससे बचने के लिए हम कुछ एक उपाय कर सकते हैं। शरीर में पर्याप्त पानी बनाए रखें, प्यास न लगने पर भी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें, यात्रा के दौरान पीने का पानी साथ रखें, ORS का घोल इस्तेमाल करें, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, फलों का रस जैसे पदार्थ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। शरीर को ढककर रखें, ढीले और हल्के रंग के सूती वस्त्र पहने, धूप में निकलने से परहेज करें, निकलते वक्त छाता, टोपी, केप, तौलिया सर पर रखें जिससे कि सीधे धूप से संपर्क नहीं हो। बाहर जाते समय चप्पल या जूते जरूर पहने, नंगे पांव न घूमें। यथासंभव छायादार स्थान पर रहें, दोपहर में धूप में गर्मी में घर से बाहर जहां तक हो सके कम निकलें। आपको बता दें कि ये छोटे बच्चों, शिशु, गर्भवती महिलाएं, हृदय रोग तथा उच्च रक्तचाप के पीड़ितों को ज़्यादा अपनी चपेट में लेता है। बाहर काम करने वाले लोग, मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति इसकी चपेट में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपको एक टोल फ्री नंबर हम दे रहे हैं, आप उससे भी संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 112 यानी 112 इस नंबर पर संपर्क करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये पहला जो गीत है अब्दुल्ला फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है मन चित्रपट संगीत। अब आपको सुनवाते हैं एग्रीमेंट फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलशन बावरा के बोल, संगीत है बप्पी लाहिरी का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना पिया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया खयाम ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: दोस्तों नमस्कार, आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व तंबाकू दिवस पर आइए सुनते हैं BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आज भी की तारीख में भी जो तंबाकू के जो लीव्स रहते हैं,
6: जी जी,
5: वो जो बड़े रहते थे, वो सूखने के बाद उसको गर्म करके,
6: अच्छा गर्म करके
5: उसको आग लगा के उसको चूहे के जो अंडरग्राउंड जो उनके
6: बिल होते हैं
5: हाँ। उसमें डाल देते, चूहे भाग जाते या मर जाते थे।
6: अच्छा, अच्छा।
5: आज की तारीख में भी हमारे जो गाड़ी
6: है, ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है,
5: इवन सिटी में भी,
6: सिटी में
5: जो ड्यूरिंग द मानसून सीजन चूहे गाड़ी के जो वायर
6: कुतर जाते हैं,
5: तो उसको रोकने के लिए भी तंबाकू डाल देते थे उससे। तो उसके अलावा जो तंबाकू का जो पान रहते हैं, उसको सूखने के बाद उसका पाउडर करते, उसको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड करके भी यूज होता था। जैसे इंसेक्ट्स है जो खेत को या धान को खराब न कर दे। सो ये कुछ तरीके थे जो अदर देन सेवन हम इंसान इसको यूज करते थे। तो ये मुझे यहाँ पे कहना है कि तंबाकू से किसी को भी सेफ नहीं है, सब खतरे में। अगर वो जीव छोटा है तो जल्दी मरेगा, अगर बड़ा है स्लोली स्लोली, लेकिन मरेगा जरूर। तो तंबाकू के लिए कहा जाता है।

0: है कि तंबाकू के जो सेवन करने वाले में से 50% लोग को तंबाकू मार ही डालता है। तो ये मैं श्रोताओं को मैं चाहता हूँ कि बात ध्यान से सुने और अपने दिमाग में उसको हमेशा के लिए स्थापित कर
1: जी
0: दे।
1: जी जी ये तो बस एक पेस्टिसाइड की तरह इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो केवल उतनी बात अच्छी है तंबाकू की, ये कह सकते हैं बस,
0: बाकी
1: बाकी कुछ नहीं। चलिए एक और आपसे बात जाननी थी कि आप BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और 2014 से आपने एक मुहिम चलाई थी तंबाकू विरोधी, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन में जितने लोग काम करते हैं, खासतौर से जो ड्राइवर्स होते हैं बस के और ट्रकों के ड्राइवर्स होते हैं, इन लोगों में ज्यादा लत होती है तंबाकू की। तो आपने जो मुहिम चलाई है इसके विरोध में, तो उसके 12 साल हो गए, क्या फायदे आपको नजर आए?
0: या तो मैं श्रोताओं को बताऊं कि तंबाकू में 7,000 अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं,
1: ओ सात
0: रसायन,
1: हजार
0: 7,000।
1: रसायन ओ
0: जब कोई भी उसको कंज्यूम करता है तो वो शरीर में जाके अलग अलग अब बीमारियां करते हैं, जैसे कि सिंपल हार्ट बीट्स बढ़ जाती है,
1: जी
0: ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट
1: हाँ
0: अटैक आ सकता है, देन लकवा मार सकता है, अपने जो बोन्स है वो वीक
1: जी
0: हो जाते हैं,
1: ओहो
0: और तंबाकू खाने वाले लोगों को बैक पेन या शोल्डर पेन या फ्रैक्चर के भी प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा तंबाकू की वजह से TB सरी की बीमारियां होती है, और
1: ओ
0: सबसे डेंजर जैसे कि कैंसर,
1: कैंसर
0: पर्टिकुलरली मुंह का कैंसर। तो ये सब बीमारी की वजह से हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज जो कर्मचारी उसकी लत के वजह से पीड़ित थे, और
1: जी
0: उसके वजह से हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन भी कम हो रहा था, बिकॉज बीमारी की वजह से वो काम पे नहीं आ सकते थे। तो
1: अच्छा
0: हमने ये सब चीज़ को देख के हमने 2014 में तंबाकू मुक्त बेस्ट ये अभियान शुरू किया, और
1: तंबाकू
0: हमने
1: मुक्त बेस्ट,
0: बीएसट
1: अच्छा
0: और आज तक उसको हमने कंटिन्यू किया है। तो 12 साल के आज ये अभियान को हो गए,
1: जी
0: तो
1: जी
0: मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये 12 साल में 5,000 हमारे कर्मचारी ने तंबाकू की व्यसन परमानेंटली छोड़ दिया है।
1: वाह
0: उसके अलावा एक जो सर्वे है उसको हम गेट्स बोलते हैं, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे,
1: अच्छा
0: उसके मुताबिक कि सरकार अगर 100 रुपीज टैक्स लेती है तंबाकू के ऊपर, तो सामने 816 रुपया का हमें अतिरिक्त भार हमें भुगतना पड़ता है।
1: ओहो
0: और जो भार है मेनली तंबाकू की वजह से जो बीमारियां होती है उसके
1: जी
0: ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा जो बीमारी की वजह से लोग काम पे नहीं जाते या प्रोडक्टिविटी लॉस के हिसाब से
1: जी
0: ये नुकसान। तो 12 साल में हमने देखा है कि बीमारियां कम हो गई, उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा कम हो गया, बीमारियां कम हो गई, इसलिए सिकनेस एब्सेंटिज्म हमारे कम हो गया, और इसके
1: अच्छा
0: वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और रेवेन्यू भी बढ़ गया, और साथ साथ में बीमारियां कम हुई है तो जो उसकी वजह से मॉर्टेलिटी थी
1: जी
0: जो डेथ वो भी हमारे इधर कम हो गई है, कैंसर के प्रमाण हमारे उधर कम हो गए। तो लोगों में एक अच्छी भावनाएं तैयार हुई है तंबाकू के विरुद्ध में। तो ये बीमारियां कम होने से ये जो लोग ठीक हो रहे हैं या जो बीमार बीमार कम पड़ रहे हैं,
1: जी
0: तो ये नोटिफाई किया गया और हमारी जो अभियान को नेशनली और इंटरनेशनल भी रिकग्निशन मिला है, एक्नोलेज किया गया, अवार्ड भी मिला है।
1: क्या बात है,
0: तो ये तो मैं चाहता हूँ कि पूरी भारत में ऐसे अभियान अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में
1: चलाए जाएं,
0: चलाया जाए, जो
1: क्या बात,
0: लोग अच्छे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े
1: निश्चित
0: हमारी।
1: रूप से आप सभी, आप और आपकी पूरी टीम जो ये मुहिम चला रही है, अभियान चला रहे हैं, आप इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं,
0: थैंक यू,
1: पुरस्कार भी आपको मिल चुका है और काफी उपलब्धियां रही इस अभियान के। बेसिक एक बहुत ही सवाल ये है कि लोग क्यों खाते हैं तंबाकू, क्या होता होगा, ये नशे की शुरुआत कैसी होती है, और वो खाने के बाद क्या उन्हें महसूस होता होगा कि फिर वो बार बार उसे खाने लग जाते हैं?
0: बेसिकली वो तंबाकू खुद से तो कोई खाता नहीं है,
1: जी
0: मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि पीयर प्रेशर, स्कूल कॉलेज के जमाने से दोस्त खा रहा है,
1: अच्छा
0: कलीग खा रहे हैं, ले लेना
1: अच्छा
0: ले लेना, तो छोटी
1: ओहो
0: छोटी शुरुआत छोटे से होती है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक रीजन ऐसा है, जब तंबाकू का सेवन किया जाता है
1: जी
0: आइदर स्मोक से या स्मोकलेस से, तो अपने ब्रेन में एक केमिकल्स जो है
1: जी
0: वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो केमिकल का नाम है डोपामिन,
1: ओके,
0: और डोपामिन जो कहते हैं इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं,
1: जी
0: वो जब डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ता है तो लोग स्ट्रेस भी महसूस फील करते हैं, उसको खुशी महसूस करते हैं, और सिंपल भाषा में बोले तो किक आती है उनको,
1: ओ
0: और किक के वजह से
1: हाँ हाँ हाँ
0: लोग ये पर्टिकुलर ड्राइवर्स ये किक के वजह से ये तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये जो देन शुरुआत में बहुत कम मात्रा में तंबाकू की सेवन बहुत कम मात्रा में डोपामिन लेवल बढ़ता है।
1: अच्छा।
0: लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे आगे ये लत बढ़ती है तब वो डोपामिन लेवल बढ़ता है तब तंबाकू का लेवल कंजम्पशन की मात्रा भी बढ़ जाती है।
1: अच्छा।
0: उसको कहते हैं कि निकोटीन रिसेप्टर डोपामिन रिसेप्टर्स वो जो है वो रजिस्ट हो जाते हैं तब थोड़ा भी डोपामिन बढ़ने के लिए ज्यादा मात्रा तंबाकू की कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है। तो ये विशेष साइकिल तैयार होती है।
1: यानी पहले एक ग्राम खाने पर भी जो खुशी मिलती थी वो 10 ग्राम खाने के बाद भी नहीं मिलती है।
0: आगे
1: फिर वो मात्रा बढ़ती जाती
0: है बढ़ते बाद इसलिए वो उसकी लत लगती जाती है और पेशेंट उसके पूरी अधीन हो जाता है उसकी पूरी डिपेंडेंस तैयार हो जाती है और देन वो बीमारियां शुरू होती है।
1: अच्छा फिर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बार लत लग जाए तो फिर वो कौन कौन सी बीमारियां बहुत लंबी लिस्ट है।
0: यस बहुत बड़ी लिस्ट है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि कैंसर ठीक है होता है 100% होता है वो लेकिन उसको टाइम लगता है। लेकिन उससे पहले जो होते हैं कि मैंने पहले बताया कि पहला तो जब तंबाकू खाते हैं तो पहला हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और कोई वो नोटिस नहीं करता है। हार्ट बीट बढ़ जाती है देन ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। देन ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है देन डेफिनेटली वो हार्ट पे उसकी असर होने लगती है तो देन हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाती है। देन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पैरालिसिस उसके भी जब तंबाकू कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो खाने की जो पाचन शक्ति है वो पुअर हो जाती है और उसके वजह से लोग उनको अपचन समस्या रहती है कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी की दिक्कत होती है। जब एक अपचन होता है तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट विटामिन या कैल्शियम मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होने चाहिए वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और उसके वजह से पर्टिकुलरली कैल्शियम जो बोलते हैं।
1: डॉक्टर साहब आप तो बता रहे हैं तंबाकू खाने का ये असर है देखा गया है कि वो जब तक वो तंबाकू नहीं खा लेते सुबह सुबह चाय पीने के बाद या सिगरेट नहीं पी लेते तब तक उन्हें हाजत नहीं आती और वो टॉयलेट नहीं जाते।
0: वो एक मिथ है वो ऐसा कुछ नहीं है। अपचन होता है तो कैल्शियम सबसे बड़ा कैल्शियम का प्रॉब्लम शुरू होता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाए इसलिए वजह से बेसिकली हड्डियां और मसल्स में कैल्शियम की बहुत नीड रहती है जरूरत रहती है। तो ये मसल्स एंड हड्डियां भी वीक हो जाती है और
1: ऐसे बोन डेंसिटी कम हो जाती
0: है ऐसे जो तंबाकू जो खाने वाले लोगों में बैक पेन मसल्स पेन और फ्रैक्चर की मात्रा भी ज्यादा रहती है। देन तंबाकू खाने की वजह से हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है इम्यूनिटी बोलते हैं वो कम हो जाती है और उससे अलावा लोग ड्यूटी पे रहते हैं तो लंच या डिनर या स्किप करने के लिए भी लोग तंबाकू खाते हैं। तो ये सब की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके वजह से जैसे कि जो क्षय रोग या टीबी शरीर की बीमारी का उनको ज्यादा खतरा रहता है
1: जी।
0: और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द एंड या नॉट द लीस्ट ये कैंसर की बीमारी
1: जी जी।
0: अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि तंबाकू को सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर होता है और भारत देश पूरे विश्व में
1: जी
0: तंबाकू की वजह से होने वाले
1: कैंसर के
0: मुंह के कैंसर के प्रथम नंबर पे आता है।
1: ओहो।
0: और ये कलेक्टिवली जो

0: भी मैंने बीमारियां बोली उसके वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोग की मृत्यु होती है। तो ये श्रोताओं को जानना बहुत जरूरी है,
1: ये बहुत दर्दनाक
0: दर्दनाक चीज है,
1: मगर सत्य है,
0: लेकिन ये सत्य है
1: जी।
0: और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ,
1: हाँ।
0: ये ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के रिपोर्ट में लिखा है
1: जी, जी, जी। हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि तंबाकू खाने से डायबिटीज होता है, मधुमेह।
0: यस, इस पे थोड़ा बाहर दूंगा
1: जी जी,
0: कि पहला तो हम समझ लेते कि पूरी दुनिया भर में
1: हाँ।
0: दो देश में सबसे ज्यादा तंबाकू प्रोडक्शन होता है, उसका कंज्यूम भी होता है
1: हाँ।
0: वो है, एक है चीन और दूसरा नंबर पे हमारा भारत देश है।
1: अच्छा,
0: और दोनों देश में ही सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है, मधुमेह के पेशेंट है।
1: ओ अच्छा,
0: तो ये इनडायरेक्टली कोरिलेशन है
1: हाँ,
0: कि तंबाकू वजह से डायबिटीज हो सकती है। आज की तारीख में देखिए तो पूरी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं। पहले
1: जी,
0: 2 साल पहले चाइना में था, अभी भारत में हो गया, और दोनों में ज्यादा ही कंजम्पशन होता है। जैसे मैंने बताया कि तंबाकू में 7,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रहते हैं, वो कंज्यूम करने के बाद हमारे जो डायबिटीज का जो मेन जो कंट्रोल मैकेनिज्म है इंसुलिन,
1: जी जी
0: ये जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को और इंसुलिन के फंक्शन को ये तंबाकू अल्टर करता है।
1: अच्छा,
0: और बहुत सारे रीजंस है, और इसके वजह से शुगर कंट्रोल मैकेनिज्म हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है।
1: अच्छा,
0: अगर आप WHO की साइट पे जाओगे और डायबिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मांगोगे
1: जी,
0: तो उसके
1: जी,
0: जो 5 प्रमुख कारण है उसमें 5वां कारण है तंबाकू का व्यसन।
1: अच्छा,
0: तो लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि तंबाकू वजह डायबिटीज भी होती है।
1: मगर जरूरी नहीं कि डायबिटीज है तो उसको तंबाकू की लत होगी,
0: नॉट नेसेसरी, बट तंबाकू खाने वालों को रिस्क ज्यादा रहती
1: इसकी
0: है,
1: इसकी रिस्क है, तो डायबिटीज हो सकता है।
0: यस, हो सकता है, और वो डायबिटीज मतलब बहुत कड़वी बीमारी है।
1: जी जी जी, तंबाकू अगर कोई किसी को अगर उसका नशा है, लत है और वो छोड़ना चाहे तो निश्चित रूप से बहुत उसके फायदे उसको मिलेंगे।
0: यस yes,
1: मगर उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते होंगे।
0: यस yes,
1: तो हमें दोनों बातें बताइए
0: yeah,
1: छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं,
0: yes,
1: कैसे होते
0: yes,
1: हैं
0: yes,
1: और एक बार वो छोड़ दे, निश्चय कर ले, अपना निर्धार पक्का हो जाए उसका कि छोड़ना है, तो उसके क्या क्या फायदे उसे होने वाले।
0: तो पहला हम उसके फायदे के बारे में बोलेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जब तंबाकू अगर सपोज वो उसे हर 1 घंटे में खाता है
1: जी,
0: या किसी बहुत बार तो वो जब नींद से सुबह में उठता है तो अब कितने समय में उसको तंबाकू की जरूरत पड़ती है, वो एक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फैक्टर है।
1: अच्छा,
0: उसकी उसकी लत के बारे में हमें मालूम पड़ता है कि उठने के बाद कितने समय के बाद उसको तंबाकू खाने की जरूरत पड़ती है। तो जब तंबाकू उस समय पे नहीं खाया तो पहला तो उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहती है।
1: अच्छा,
0: वो बहुत जरूरी है हार्ट हेल्थ के लिए,
1: बेशक
0: हृदय की स्वास्थ्य के लिए उसकी हार्ट बीट नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। तो वो नॉर्मल रहने लगती है, देन उसके बाद ब्लड प्रेशर जो, इसलिए अब हम जब भी एज अ डॉक्टर हम जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हम उसको पूछते हैं अगर तंबाकू आप एडिक्ट हो तो आधे घंटे के बाद ही हम आपका बीपी चेक करेगा अगर आपने, क्योंकि हमें मालूम है वो ज्यादा ही दिखाने वाला है।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए तो इनडायरेक्टली जब तंबाकू का लत या एडिक्शन छोड़ते हो तो बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है।
1: अरे वाह,
0: तो ये दोनों हार्ट बीट्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता तो छोटा का हार्ट अटैक के रिस्क भी कम हो जाते
1: हैं। कम हो जाती है जी जी जी।
0: देन मैंने बताया कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने लगती है, हमारी जो पाचन शक्ति है वो इम्प्रूव हो जाती है,
1: हाँ।
0: हमारे हड्डियाँ हमारे मसल्स वो स्ट्रांग होने लगते हैं।
1: वाह,
0: देन आगे जाके छोटा का तंबाकू के जो खाने वाले जो सबसे डेंजर प्रॉब्लम है वो है कैंसर, उसकी भी रिस्क कम हो जाती है। देन डायबिटीज में हमारे पास लोग है जिन्हें तंबाकू छोड़ दी है
1: हाँ।
0: उनकी डायबिटीज की गोले भी बन हो गई क्योंकि शुगर भी नॉर्मल होने लगी है अभी उसकी।
1: अच्छा,
0: ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट है
1: हाँ, हाँ।
0: कि तंबाकू लत छोड़ने के बाद उनकी डायबिटीज की गोलियां भी बन हो गई है।
1: क्या बात,
0: तो ये सब उसके फायदे है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसके क्या फायदे है छोड़ने के बाद। तब यस, ये जरूरी है कि जब तंबाकू में जो 7,000 केमिकल है उसमें से एक केमिकल का नाम है निकोटीन
1: जी,
0: और निकोटीन की वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है और उसकी वजह से उसकी लत लगती है।
1: अच्छा,
0: तो जब तंबाकू सडनली आप छोड़ देते हो, लोग कहते हैं कि हम आज मैं अगर 5 बार खाता हूं तो कल 4 बार खाऊंगा, तीन, तो ऐसा कभी नहीं होता, उसको झटके से ही छोड़ना है।
1: अच्छा,
0: तो ही फायदा होगा, तो ही उसकी लत छूटेगी। तो जब झटके से छोड़ते हो तब आपको निकोटीन का विड्रॉल सिम्टम 100% महसूस होगा,
1: शरीर जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है,
0: वो महसूस होगा ही
1: हाँ।
0: वो जो विड्रॉल सिम्टम जैसे कि वो वीकनेस आ जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, पर्टिकुलर डाइवर कंडर को ये बहुत होता था हमारे पास तो ये, लेकिन यहाँ पे जरूरी है कितना टाइम तक ये विड्रॉल सिम्टम रहता है।
1: अच्छा,
0: वो 2 दिन से ज्यादा 2 हफ्ते चलता है।

0: उसके बाद अपनी बॉडी खुद को एडजस्ट करने लगती है।
1: जी जी जी,
0: उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है,
1: तो पूरा शरीर अपने जो है सामान्य स्थिति में आ जाता है
0: बस,
1: जैसा तंबाकू खाने से पहले
0: पहले था वैसा।
1: वाह,
0: बस थोड़े दिन के लिए अपने को सहन करना है और वो समय अगर निकाल डाला तो वापस कभी तंबाकू खाता नहीं।
1: कितनी जरूरी बात है हमारे श्रोताओं को, उनमें से किसी को अगर ये लत है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत छोड़ दें,
0: झटके से छोड़ना है,
1: झटके से एक साथ, और उसके बाद
0: दो हफ्ते ज्यादा से ज्यादा दो
1: ये लक्षण रहेंगे,
0: बस
1: विड्रॉल सिम्टम्स और उसके बाद वो सामान्य
0: हो जाएगा, अपनी बॉडी अपने आप को रिकवर करती है।
1: वाह वाह, तो फायदे हमने जान लिए। हम तंबाकू की बातें जब होती है तो एक एक्ट है, एक ऐसा नियम है, कुछ वो कानून है, कोप्टा एक्ट कुछ ऐसा कहते हैं।
0: यस,
1: ये क्या होता है, क्या कोप्टा एक्ट क्या है?
0: सी, जैसे तंबाकू की वजह से हमारे पास जैसे सबसे ज्यादा मौतें होती है, खर्चा होता है।
1: जी जी,
0: 100 रुपए के टैक्स के सामने 816 रुपए का हमें खर्चा हो रहा है। तो ये उसको और कम करने के लिए कुछ कानून बनाया है, उसको कोप्टा एक्ट बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म है कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट।
1: अच्छा, कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, कोप्टा एक्ट,
0: कोप्टा एक्ट।
1: अच्छा,
0: उसके अंतर्गत आपको पब्लिक प्लेस में तंबाकू का कोई भी प्रकार का सेवन प्रतिबंध है, इज अ पनिशेबल ऑफेंस।
1: जी जी,
0: देन खाके पब्लिक प्लेस में थूकना भी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। देन उसके एडवर्टाइजमेंट
1: जी
0: जो होती है वो भी अलाउड नहीं है आपको कोई भी प्रकार के। सो ये एक एक्ट इसलिए लाया है कि लोग एक दूसरे को देख के जो खाते है वो ना खाए और उसकी लत और उसको कम करते जाए हम लोग। उसका फायदा हुआ है, कम हुई है, जो लोग खाने वाले परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन जो उसे और हमें आगे लेके जाना है उसको एक्ट को। और अभी कुछ सरकार ने उसको कड़क किया है कि उसके अंतर्गत वो सरोगेसी ऐड बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: उसको भी बैन किया है।
1: हाँ,
0: कि कुछ नाम सेम रखते हैं लेकिन कुछ अलग प्रोडक्ट रहता है। एक्स तंबाकू का जो प्रोडक्ट था पहले
1: जी,
0: उसको खाली नाम सेम रखते हैं और प्रोडक्ट कुछ अलग रहते
1: होता है। तंबाकू ही है मगर उसको कुछ एक नया नाम और नया रूप दे देते हैं,
0: या तो फिर उसका प्रोडक्ट अलग कर देते हैं।
1: अच्छा,
0: कि जो पहले वो नाम तंबाकू के वजह से के लिए यूज होता था, अभी वो तंबाकू के वजह नहीं होते, कुछ अलग प्रोडक्ट जो नॉर्मली लोग खाते पीते हैं उसके लिए, तो सरोगो एड बोलते हैं, उसको भी बैन किया है।
1: जी, जी।
0: तो ये इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू का कंजम्पशन कम हो जाए, उसकी वजह से जो बीमारियां है कम हो जाए और खर्चे भी कम हो जाए।
1: तंबाकू तो नहीं मगर तंबाकू जैसे और तंबाकू इस्तेमाल करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसी की अभी बात कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग सीधे सीधे तंबाकू तो नहीं खाते मगर ऐसे प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्टली जिससे तंबाकू उनके शरीर में जाता है।
0: जैसे अभी बहुत कुछ आ गया है, इनहेलेशन आ गया है।
1: हाँ हाँ,
0: भले सिगरेट नहीं पीते लेकिन कुछ इनहेलेशन तरीका ई सिगरेट आ गई है।
1: हाँ,
0: उसको भी अलाउड नहीं है, वो भी हानिकारक है।
1: जी जी,
0: उसमें हानिकारक।
1: हाँ, तो ये जो तंबाकू ना खाके अगर ये ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी उतना ही धोखा।
0: यस यस,
1: उतना ही रिस्क।
0: यस यस,
1: जो व्यक्ति तंबाकू नहीं खाता वो गलती से उसके शरीर में तंबाकू चला जाए तो पहला रिएक्शन बॉडी का तो ये होता है कि जैसे कभी पान खाते हुए पान में किसी ने हल्का सा तंबाकू डाल दिया और वो हमने खा लिया तो तुरंत उल्टियां होने लगती।
0: यस यस यस, और बहुत बार तो जैसे,
1: लेकिन जिनको लत लगती है उनको पहली बार ऐसा नहीं होता,
0: उनको नहीं होता। ये जो आपने बताया वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको।
1: हाँ,
0: हस्बैंड स्मोक करता है
1: जी जी,
0: उसके वाइफ है या उसके बच्चे है।
1: हाँ,
0: तो उसमें भी वो धुआं जाता है ना।
1: बिल्कुल। हाँ,
0: वो धुआं जाता है। देन या घर में कोई तंबाकू खाता है तो उसको देख के बच्चे भी उसके खाने लगते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये बहुत जरूरी है। तो पैसिव स्मोकिंग के वजह से इट हैज बीन एस्टैब्लिश कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जैसे कोई एक फैमिली में एक हस्बैंड स्मोक करता है
1: जी,
0: और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसके वो धुआं उसको जाए तो उसके बच्चे को भी खतरा है
1: जी,
0: जो अभी तक दुनिया में आया नहीं है, उसको भी खतरा है,
1: तो उस पर भी असर हो रहा है,
0: बहुत खतरा है उसके लिए, सबसे ज्यादा खतरा है उसको। तो
1: जी,
0: द पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको।
1: हाँ,
0: ये सिर्फ चीजें लोगों को आई डोंट नो मालूम है या उसको इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, आई डोंट नो, बट लोगों को मालूम होना जरूरी है ये बातें।
1: अच्छा, हमने सुना है कि कुछ दवाइयों के तरीके में कुछ तरह के मेडिसिन है, उसमें तंबाकू का इस्तेमाल भी होता है?
0: नहीं, आई डोंट थिंक सो।
1: अच्छा,
0: आई डोंट थिंक सो।
1: या कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो फला डॉक्टर साहब ने कहा है कि पान में थोड़ा तंबाकू खा लिया करो ताकि आपका पेट अच्छा रहे।
0: नहीं, ये सब मिथ्स है, मिथ्स।
1: अच्छा,
0: है, मिथ्स है,
1: ऐसा कुछ।
0: सी, तंबाकू इतनी क्वांटिटी इज नॉट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी।
1: बस
0: उसको छोड़ना ही है ना, उसको नजदीक जाना ही नहीं उसके। बस,
1: हाँ,
0: बस।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: जैसे शुरुआत में बताया, छोटा जीव है तो जल्दी मरेगा, बड़ा है तो बाद में मरेगा।
1: हाँ, मरेगा जरूर।
0: मरेगा जरूर।
1: तो इस कठोर सत्य को, इस कटु सत्य को जो हमें जान लेना चाहिए,
0: एक्सेप्ट करना है हमें,
1: एक्सेप्ट करना है। कोई जादुई मिक्स आपने बनाया है?
0: यस, उसको हमने,
1: ये कैसे हुआ, कब हुआ, और इसका क्या आपको परिणाम कैसा देखने को मिला?
0: उसको हमने नाम दिया मैजिक मिक्स, या मैजिक चूरन,
1: जादुई चूरन,
0: जादुई चूरन। जैसे अभी तंबाकू की जो एडिक्ट लोगों में दो प्रकार की एडिक्शन है, एक है साइकोलॉजिकल एडिक्शन जो 90% लोगों में, 10% लोग में फिजिकल डिपेंडेंसी है।
1: अच्छा,
0: तो 90% लोग बस उसको वो कलर का चूरन मांगता है और उसको हाथों में घसना है और खाना है, और उसका जो कैनिस्टर है या डब्बी बोल रहे हैं जो महाराष्ट्र में, तो वो उसको दिख गई तो उसको लगता है मैंने तंबाकू खा लिया।
1: अच्छा।
0: तो हमने वो बेस को ध्यान में रखते हमने चूरण बनाया है जिसमें दालचीनी, अजवाइन, जीरा, बड़ी शोप और लवंग का इस्तेमाल किया है। जब उसको आप ग्राइंड करोगे तो हुबहू तंबाकू सरीका ही लगेगा।
1: अच्छा।
0: और जो चूने की जगह पे हमने राइस पाउडर यूज करते हैं उसमें।
1: अच्छा।
0: तो जब आप उसको हाथ में लेके घसोगे तो फील सेम ही आएगा कि आप तंबाकू के घिस रहे हो।
1: लोग तंबाकू मल के खाते
0: हैं तो उसको कलर भी वैसा ही है उसका। ना उसमें साइंस ऐसा है कि जो दालचीनी है इसकी प्रॉपर्टी है कि जो निकोटिन के विड्रोल को और कम करती है।
1: अरे वाह,
0: तो साइंस भी है उसके पीछे।
1: क्या बात है।
0: तो इसके वजह से हमने चूरन बनाया, उसका नाम रखा मैजिक मिक्स।
1: मैजिक मिक्स,
0: मैजिक मिक्स,
1: वाह वाह वाह।
0: और वो मैजिक ने सच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैजिक किया है।
1: हाँ।
0: और वो खा के बहुत सारे लोगों ने तंबाकू छोड़ दिया है।
1: वाह वाह।
0: तो मैं लोगों को बोलूंगा कि उसकी लिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब में।
1: अच्छा।
0: मैजिक मिक्स मेरा नाम डाल के आपको मिल जाए कैसे बनाना है।
1: हाँ।
0: हमने उसको कॉपीराइट किया है, आप कोई भी घर पे बना सकता है।
1: अच्छा।
0: और उसको यूज करे और अपनी जब भी तलब लगे तंबाकू की जगह उसको खाए।
1: मतलब ये मैजिक मिक्स कोई कमर्शियल प्रोडक्ट?
0: नो, इट इज नॉट कमर्शियल प्रोडक्ट।
1: ये सबके लिए है, सबके फायदे,
0: सबके फायदे के लिए। हमने खाली कॉपीराइट किया कि उसको कमर्शियल यूज कोई ना करे उसको।
1: अच्छा।
0: आपके लिए ये, आप खाओ, खुद बनाओ,
1: सबके लिए ये मुफ्त है, फ्री है,
0: खुद बनाइए घर पर, खाइए।
1: तो ये फॉर्मूला जो है वो यूट्यूब पे देख करके बनाया जा सकता है।
0: और मेन बात उसको खा के थूकना भी नहीं है।
1: हाँ।
0: तो स्वच्छ भारत अभियान को भी हम प्रमोट कर रहे हैं उससे।
1: क्या बात है, वाह वाह।
0: उसके खाने के बाद वो निगलना ही है क्योंकि वो निगलने के बाद बहुत सारे बेनिफिट देता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सब ये अपने गर्म मसाले फायदेकारक ही है हमारे बॉडी को,
1: हमारे सुनने वालों के बेनिफिट के लिए।
0: यस।
1: हम इस मैजिक मिक्स का जो फॉर्मूला है उसे एक बार दोहराते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आपने डाली?
0: दालचीनी,
1: दालचीनी,
0: अजवाइन,
1: अजवाइन,
0: जीरा,
1: जीरा,
0: बड़ी सौंफ,
1: सौंफ,
0: सौंफ, और एक आध लौंग।
1: अच्छा।
0: उसको मिक्स करके,
1: लौंग तो एक ही ले रहे हैं, बाकी जितनी
0: बाकी इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी,
1: इक्वल क्वांटिटी,
0: इक्वल
1: क्वांटिटी,
0: उसको ग्राइंड करना है मिक्सर में। मिक्सर होगा ओ वो तंबाकू सरीका लगेगा।
1: अच्छा।
0: लेकिन उसमें तंबाकू नहीं है। चूने की जगह पे राइस पाउडर यूज करने का, वो भी चावल का आटा।
1: अच्छा।
0: तो ये आप करके उसको सेम कनिस्टर में,
1: तंबाकू मलने की आदत है,
0: ऐसे ही मल के खाओ,
1: मल के जो है अपना पूरा एक्शन कंप्लीट करो,
0: एक्शन कंप्लीट,
1: और उसके बाद चाहे तो उसको होठों में दबा ले थोड़ी देर,
0: या दबा लो
1: उसका जो जूस निकलेगा
0: वो
1: आपके शरीर के लिए फायदेमंद
0: करेगा।
1: वाह वाह,
0: उसको थूकना भी नहीं है।
1: क्या बात है, बहुत ही जादुई बात है ये तंबाकू के बारे में, इस लत को छोड़ने के लिए जो है कारगर सिद्ध होगी। तो डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम के आखिर में कुछ तंबाकू छोड़ने के बारे में कुछ पते की बात हो जाए, आप क्या बताना चाहेंगे इस मौके पे?
0: मैं भारत के वासियों को बताना चाहता हूँ कि तंबाकू कभी भी हमें फायदा नहीं करता है, उससे सिर्फ नुकसान नुकसान नुकसान ही होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक भी नुकसान होता है।
1: जी जी,
0: वो लोगों को मालूम नहीं है। ऐसा सर्वे हुआ है कि अगर आपने तंबाकू की लत छोड़ दी तो आपका जो एक इंडिविजुअल घर की जो आर्थिक परिस्थिति 10% इंप्रूव हो जाती है।
1: क्या बात है। मुझे एक और बात याद आई कि मेरे कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था।
0: हाँ।
1: और वो कृषि बैकग्राउंड से था।
0: हाँ।
1: उसके घर वाले जो है खेती करते थे। हाँ। तो वो कहता वो तंबाकू खाया करता था बहुत नियमित रूप से।
0: हाँ।
1: और वो कहता है मुझे सांप ने अगर काट लिया तो मुझे जहर नहीं चढ़ेगा। तो ये कितना बड़ा मिथ है, आप जरा
0: बहुत गलत फहमी है। ये तंबाकू छोड़ना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: वो सिर्फ वो इंडिविजुअल को नहीं खाता है, पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है वो। जैसे हमने देखे, आप किसी को अगर देखना है तो टाटा हॉस्पिटल में जाके एक बार चक्कर मार के आए बस, खाली समझ जाएंगे ये तंबाकू से क्या गड़बड़ होती है।
1: जी जी।
0: लोगों को जिंदा है लेकिन मुंह में खाना नहीं खा सकते, नाक में नलीट से खाना खाया जाता है।

0: तो मैं चाहता हूँ कि अपने फैमिली को, अपने देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
1: जी,
0: उसको मजबूत करने के लिए, शारीरिक और मानसिक और आर्थिक मजबूत करने के लिए हमें तंबाकू की लत को छोड़ना ही है।
1: और कोई भी फॉर्म हो तंबाकू का,
0: कोई भी फॉर्म,
1: या तो कच्चा तंबाकू है या वो उसकी पाउडर नसवार
0: नसवाली है, स्मोकिंग है,
1: या स्मोकिंग है,
0: कोई भी प्रकार का
1: तंबाकू,
0: बस उसको छोड़ दो, बस खत्म करो, अपनी फैमिली और अपने देश के लिए उसको छोड़ दो।
1: बहुत ही अच्छी बातें आज तंबाकू विरोध जो है इसके बारे में आपने बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी।
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। तंबाकू की वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोगों की मृत्यु होती है। तंबाकू की वजह से मनुष्य उसकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाती है, और उसके वजह से उनकी फैमिली बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। तो मैं आज तंबाकू विरुद्ध दिवस के निमित्त श्रोताओं को अपील करूंगा कि तंबाकू की व्यसन को पूरी तरह छोड़ दे, और झटके से छोड़ दे, और अपने फैमिली को और हमारे देश को मजबूत बनाए। धन्यवाद।

विश्व तंबाकू दिवस पर अभी आप सुन रहे थे VEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत। आज का मैटिनी शो बस यहीं तक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: पहली भारत यात्रा है। म्यांमा के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमा के राष्ट्रपति कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये

0: कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस पहुंचे अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेता परेश रावल का जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम उन्हें और उनकी फिल्मों के गाने आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। भागम भाग इस फिल्म का गाना रेमो फर्नांडिस और सुजीन की आवाजों में, समीर के बोल संगीत प्रीतम का।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आंखें फिल्म का गाना, नितिन रायकवार आदेश और अरुण बख्शी की आवाजों में। नितिन रायकवार के बोल, संगीत है जतिन ललित का।

अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम का, ओह माय गॉड, इस फिल्म का गाना है, कैलाश खेर, मीत ब्रदर्स और अनजान की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये है राजा फिल्म का गाना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये हंगामा फिल्म का गाना शान और साधना सरगम की आवाजों में समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली।

0: 2 जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी।
5: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना गोलमाल, इस फिल्म का गाना शेखर और स्नेहा पंत की आवाजों में, विशाल दादलानी और कुमार का लिखा हुआ गाना, संगीत है विशाल शेखर का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अतिथि तुम कब जाओगे। इस फिल्म का गाना अनुपम आमोद की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, संगीत है प्रीतम का।

उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। जी हाँ, शाम का वक्त हो और अगर आपको पता चले कि आपकी पसंद का आलू का बना हुआ कोई बहुत ही मज़ेदार नाश्ता आपके सामने आया है तो आप भी यही कहेंगे ना कि उनको देखा तो दिल उस पर आ गया है। मदन मोहन का इसमें संगीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों का राजा है और वो हर किसी के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बेफिक्र और रूमानी शाम की याद दिलाती है आज की इबारत। इसे पढ़कर मन में एक चुलबुली और हास्य से भरी तस्वीर उभर रही है जिसमें खुद से बातें करते करते अचानक से शायरी और फिर खाने पीने की चीज़ों जैसे कि ठंडे पानी, समोसे, बर्फी पर आ जाते हैं। ये बोलचाल की भाषा का एक बहुत ही प्यारा और अनूठा मिश्रण है जो कह रहा है कि जीवन की उलझनों को भी हंसी मजाक के चाशनी में डुबोकर आसान बनाया जा सकता है। जिंदगी में चाहे जितनी समस्याएं हो, हंसी मजाक का स्वाद कभी कम नहीं होना चाहिए। अंत में गुजरे हुए उन सुनहरे दिनों की याद इस पूरी इबारत को एक बहुत ही भावुक और प्यारा सा मोड़ दे देती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर रोज हसीन शाम को इतने लू वाली गर्मी है, शाम को ऑफिस से आने के बाद ठंडे ठंडे पानी से दोबारा शावर में नहाना ही पड़ता है, उसके बाद ही आगे की दिनचर्या शुरू हो पाती है और हम थोड़े से रिलैक्स हो पाते हैं। तो चलिए आपके दिल दिमाग को हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और ठंडे पानी से नहाने का इसमें जो मज़ा है वो तो और भी है ही। पति पत्नी और वो इस फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर और आशा भोंसले की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, रविंद्र जैन का संगीत।

आलू से बना हुआ कोई स्वादिष्ट नाश्ता जब आपके घर में बन रहा हो तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, और जब वो सुगंध फैलती है तो ऐसा भी कभी होता होगा ना कि आसपास में आपके कोई पड़ोसी, आपके कोई नाते रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त आपका दरवाज़ा खटखटाते होंगे और पूछते होंगे भाई आज क्या बन रहा है। एक साथी लिख रहे हैं, आलू वो सादगी है जो हर स्वाद में रंग भर देता है, इसलिए हर घर की रसोई में उसकी खास जगह होती है। हर सब्जी उसका साथ पाकर और भी स्वादिष्ट हो जाती है। आलू सच में रसोई का राजा है। आलू न दिखावे में बड़ा है न नाम में, लेकिन काम में सबसे बड़ा है। यही उसकी असली पहचान है, जो हर मौसम, हर सब्जी और हर थाली में फिट हो जाए वही असली राजा कहलाता है। आलू, आलू की कहानी सादगी की जीत है, कम में भी सबसे ज्यादा स्वाद देने की कला है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज मैं आलू की टिक्की बना रही हूँ। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे बटाटा वड़ा और फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। और एक हमारे साथी जो है उन्होंने हमें अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की शुभकामनाएं दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की खोज दक्षिण अमेरिका में हुई थी और आलू की कहानी वहीं से शुरू हुई थी। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बात चल रही है तो आलू के पराठे, समोसे, पकौड़े से लेकर चिप्स, पापड़ तक सभी का स्वाद निराला है। सुबह सुबह आलू के पराठे मिल जाए, दोपहर में आलू की सब्जी और पूरी मिल जाए और शाम को समोसे मिल जाए तो कहना ही क्या। ये सिर्फ आलू ही नहीं, ये हमें सिखाता है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे आलू हर सब्जी में मिलकर इसका स्वाद बढ़ा देता है, वैसे ही हमें जीवन में होना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि हमारा महत्व हमेशा बना रहे। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के बिना भारतीय रसोई अधूरी है। यद्यपि आज आलू भारतीय रसोई का एक अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारतीय मूल की सामग्री नहीं है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू महज एक सब्जी नहीं, ये एक एहसास है, ये वो निश्चल साथी है जो हर दूसरी सब्जी के साथ अपनी पहचान मिटाकर घुल मिल जाता है। कभी वह गोभी के साथ जुगलबंदी करता है तो कभी मटर के साथ मिलकर एक नया स्वाद रचता है। वह किसी राजा के थाल का हिस्सा भी है और एक गरीब की झोपड़ी में तसल्ली का निवाला भी है। और एक साथी लिख रही है कि मुझे तो पता ही नहीं आज आलू दिवस है, आज अजीब सहयोग बना है, आज हमारी श्रीमती जी ने आलू के पराठे बनाए हैं, दही के साथ सेवन कर रहे हैं हम। बहुत धन्यवाद आपका। एक साथी लिख रहे हैं कि बेहद खूबसूरत गीत के साथ शुरुआत की।

वैसे आलू दिवस पर हमारे यहाँ आलू पालक टमाटर की सब्जी बनी है, मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी रेसिपी पर सबसे ज़्यादा आता है, कौन सी रेसिपी है जब आप ये कहते हैं कि ये दिल मुझे बता दे कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। भाई भाई फिल्म का गाना, गीता दत्त की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत, अशोक कुमार और श्यामा पर फिल्माया गया गाना।

तो बताया क्या आपने कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी चीज पर आ गया है। बहुत सारे श्रोताओं ने इतनी सारी बातें लिखी है, लिखते हैं कि लाल टमाटर हरे मटर में मंडी चलने की ठानी, आलू भी तैयार हो गया साथ चली गोभी रानी। मुझे आलू इसलिए पसंद है कि वो सभी के साथ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए सबको आलू भाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज भी लंच में दही वाले आलू बनाए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि उदयपुर जिले में फतेह स्कूल के पास में एक जगह है जहाँ के आलू बड़े बहुत फेमस है। मैं कल परीक्षा

दिवस पर गीतों का मजा मिलेगा। और लिखा है कि आलू दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, आलू बिना कोई रसोई बन नहीं सकती, ये सभी सब्जियों में मिक्स हो जाता है, चिप्स और पराठा तो आलू के ही स्वादिष्ट होते हैं, खिचड़ी और तहरी में मिलाकर उसका टेस्ट भी बदल दिया जाता है जो सबको पसंद आता है, अब तो मिठाइयों में भी आलू का प्रयोग होने लगा है, समोसा तो बिना आलू के बन ही नहीं सकता, आलू की पकौड़ी तो चटनी के साथ गर्मा गर्म खाने में बड़ा ही मजा आता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, आलू पौधे का भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं होता है। एक साथी ये लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों के राजा है, पर मैं तो कहूंगी रसोई की रानी है, एक माँ जानती है कि बच्चों को कैसे सब्जी खिलाना पड़ती है, आलू के साथ कुछ मिला दो तो खा लेते हैं, और हमारा जो बिहारी खाना है वो तो बिना आलू के पूरा ही नहीं बनता है, दाल भात चोखा लिट्टी चोखा, और अगर आलू नहीं है तो ये व्यंजन अधूरा है, संक्रांति में दही चूड़ा, उसके साथ आलू दम, सफर में जाना है पूरी के साथ आलू की भुजिया, बरसात के दिनों के लिए आलू का सूख होता, अतिथियों के लिए आलू के चिप्स, सर्दियों में आलू के अचार, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आलू सब सब्जियों के साथ घुल मिल जाता है, और अपने यहाँ आलू का रायता बहुत पसंद किया जाता है जो दही के साथ बनाया जाता है। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि अगर ठंडे ठंडे पानी से ही नहाना था तो सूरज को और पास क्यों बुलाना था

साथी लिख रहे हैं कि आलू साधारण सा दिखता है लेकिन हर रसोई की जान है, हर मसाले और हर सब्जी के साथ मिलकर स्वाद दो गुना कर देता है, इसलिए उसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। जिस थाली में आलू हो वो थाली अधूरी नहीं लगती, वो हर स्वाद को पूरा करने की ताकत रखता है। आलू की खासियत यही है कि वो खुद में सादा होकर भी हर व्यंजन को खास बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हम और बैराग फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। ऐसा कभी होता होगा ना कि आपने फरमाइश की है कि मुझे आलू से बना हुआ समोसा खाना है लेकिन बन कुछ और जाता है, आलू के पकोड़े बन जाते हैं या आलू की टिकिया बन जाती है, तो आप के दिल में यही आता होगा ना कि अरे मैंने तो ये बनाने के लिए कहा था पर आज तो ये बन गया है, कुछ अलग ही हो गया है। चलिए ऐसा ही कुछ गाना है, सुनते हैं बैराग फिल्म से।

कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि रेसिपी कौन सी बनने वाली होती है और क्या बन जाती है, हम कोशिश करते हैं एक नई चीज़ कुछ बनाने की और कुछ और बनाने का सोचते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाता, कुछ और ही बन जाता है। हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा स्वादिष्ट, और कभी कभी वो स्वाद जिसकी हम उम्मीद रखते हैं वो कभी नहीं आता है, तो भी मन बड़ा खिन्न हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू को ध्यान से खाओ, क्योंकि आलू बाहर से ठंडा होता है लेकिन अंदर से गर्म होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू ज़्यादा खाओगे तो आलू जैसे हो जाओगे, और लौकी खाओगे तो लौकी जैसे बनोगे। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सचमुच संयोग है, मैंने आज आलू के पराठे ही बनाए, पति देव को बहुत पसंद है, मक्खन और अचार के साथ। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की लौंज एक प्रकार की मिठाई है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सर्दियों में नए आलू को मिट्टी के हांडी में जिसमें आग तपती है उसमें रख देते हैं, उस पके आलू खाने का अलग ही आनंद और स्वाद है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई इसके भी दिन बहुरे हैं।

उजाला फिल्म का गाना हमने सुना, शंकर जयकिशन का इसमें संगीत है। और ये सही बात है कि जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी या कुछ चीज़ बना के ले वो आलू की होती है। आलू की सब्ज़ी और पूरियां, या फिर मसाले वाली पूरियां, या फिर आलू के पराठे, या इस तरह की चीज़ें हम बना करके ले जाते हैं। यहाँ तक कि हम जब सफ़र में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो भी सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी आपको दिखाई पड़ेगी वो आलू की सब्ज़ी ही होगी। एक साथी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद शहर के जो आलू होते हैं वो भारत में नंबर वन तरह के आलू होते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने ज़माने और आज तक आलू बैंगन की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा गुजरात के घरों में खाई जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि ज़्यादा खाओगे तो एसिडिटी करेगा। जी हाँ, कोई भी चीज़ हो उसे अति किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि छोटे छोटे आलू को जाड़े के दिनों में हर घर में तापने के लिए जो अलाव जलाते हैं उसमें भून कर बच्चे अक्सर कटोरी में नमक उसमें डाल करके खाते हैं। गरम गरम बड़ा टेस्टी होता है। पहले गन्ने की पेराई होती थी तो खोलते कढ़ाई में जब राब तैयार होने को होती थी तो छोटे छोटे आलू को धागे में गुथ कर कढ़ाई में डाल देते थे। कितना मीठा और टेस्टी वो आलू के लिए जो है हम झगड़ा करते थे। अब तो गाँवों में गन्ने की पेराई बंद हो गई है तो मीठा आलू भी अब नहीं मिलता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल लाल आलू बहुत मिल रहे हैं जिनमें कम मात्रा में स्टार्च होता है और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की भाजी, बैंगन का भरता, बोले जी बोलो तो क्या खाओगे, ये एक इस गाने के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सबसे सस्ता आलू है, जो सभी सब्जियों के भाव ज़्यादा हो जाते हैं तो केवल आलू धनिया डालकर रसदार सब्जी चावल और रोटी के साथ खाने का जो मज़ा है वो बड़ा आता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बातें सुनकर हमारी बेटी ने भी फरमाइश कर दी कि अभी तो खाना बन गया।

है। तो डिनर में आज मस्त आलू की रसेदार सब्जी जिसमें डाली हो थोड़ी सी केरी और उसके साथ हो जाए थोड़े से जीरा राइस, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की बात हो रही तो मुझे चूल्हे की आँच में सेक कर आलू बहुत पसंद आते हैं। जब कभी लंबी यात्रा पर जाता हूँ तो मम्मी हमेशा ही आलू के पराठे और आलू की चटनी ही रखती है जो सूखी रहती है और आसानी से हम ले जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आलू की बातें तो हम कर रहे हैं, उससे चटपटे व्यंजन भी, लेकिन हो सकता है कि हमारे कई साथी हो जिन्हें कुछ मीठी चीज़ें भी पसंद हो, जैसे बर्फ़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें भी तो उन्हें पसंद आती है, या फिर आलू से भी हम आलू की बर्फ़ी भी बना सकते हैं। कई साथियों ने हमारे लिखा है कि आलू का हलवा बनाया जाता है, आलू की बर्फ़ी भी बनती है। तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं, बर्फ़ी फिल्म का, स्वानंद किरकिरे के बोल, प्रीतम का संगीत है, आवाज़ किसकी है आप

मोहित चौहान की आवाज़ में ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम सब्जियों का राजा कह सकते हैं, एक ऐसी सब्जी जिसके सहारे हम कोई भी उत्सव मना सकते हैं, कोई भी त्यौहार की शान बढ़ा सकते हैं। सब्जियों को खाने में मुंह बिगाड़ने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। गोभी आलू, मटर आलू, परवल आलू, कटहल आलू, टमाटर आलू, किसी भी कॉम्बिनेशन में सुपर हिट है। आलू समोसे में आलू, पराठे में आलू, पकौड़े में आलू। और एक साथी ने हमारी ये लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने आलू के महत्व को समझाने के लिए हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। इस साल की थीम है, जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है। और ये थीम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों को सहारा देने में आलू की भूमिका को रेखांकित करती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि माँ के हाथ के बने आलू के पराठों का स्वाद अब कहाँ मिलेगा, आज आपने माँ की याद दिला दी। और

एक साथी लिख रहे हैं कि भंडारे में आलू पूड़ी खाने का स्वाद तो खाने वाला ही जानता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मेरी बेटी पूना के एक घर में रहकर पढ़ रही थी, मैं कभी कभार 10-15 दिन के लिए जाती थी, उसकी सहेलियों को बहुत आलू के भरवा पराठे और दही का रायता बनाकर खिलाया था, आए दिन यही फरमाइश उनकी होती थी। चलिए धन्यवाद आपका। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं और देव कोहली के बोल हैं, अनु मलिक का इसमें संगीत है।

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म का ये गाना हमने सुना, और सचमुच जब समोसे की बात आती है तो ज़्यादातर उसमें आलू ही डाल करके बनाया जाता है। आलू के बगैर समोसे का मज़ा हमें तो नहीं आता है। हो सकता है बहुत सारे साथी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखते हों। एक साथी हमारे लिख रहे हैं, उन्होंने आलू बोने का सबसे अच्छा तरीका जो है उसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण लिखा है। पूरा तो हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो ये बात आपके काम की हो सकती है कि उन्होंने लिखा है कि सबसे अच्छा तरीका यह कि खेत में 3-4 बार गहरी जुताई करके और मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना ले। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक जैसे कि कार्बेंडाजिम से उपचारित करें और बीज को मेड़ों पर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में रोपे, जहां लाइन से लाइन की दूरी सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी इतने सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण इन्होंने लिखा है जो हो सकता है कि आपके काम का हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक ही इबारत रहती है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं। किसी को इसमें बहुत कुछ अच्छा नज़र आता है और किसी को इसमें कुछ बिल्कुल नहीं भाता है। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि अब गिलास पानी से आधा भरा है, इसे आधा भरा कहें या आधा खाली कहें, ये हमारी सोच पर है। वैसे सबसे जो अच्छी बात यह है कि इससे हमें बहुत सारे गानों के बारे में जानकारी मिलती। चलिए अब बात ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने जीवन में वो चीज़ें खाई होती है और हमें अच्छी लगती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आपको आलू नहीं खाना है या मीठा नहीं खाना है या तला हुआ नहीं खाना है, और तब हमारे दिल में एक ही बात आती है कि हाय रे वो दिन क्यों ना आए कि जब आलू की इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बनती। चलिए अनुराधा फिल्म का गाना सुनते हैं।

और अब एक बड़ी सुंदर बात, आलू का रस चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है, ऑलराउंडर है आलू, ये हमारी एक साथी ने बात लिखी है। और इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज की त्रिवेणी में बातें होंगी आशा की, उम्मीद की। आशा क्या है? वैसे तो इसे परिभाषित करना या इसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन आशा को हम तब पहचानते हैं

जब हम इसे महसूस करते हैं और जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आशा है अपने लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना और उसे पाने की कोशिश करना। हम सभी के जीवन में आशा का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये निराशा से बचाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये एक सकारात्मक भावना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें जीवन का अर्थ, उद्देश्य और धैर्य प्रदान करती है। आशा कठिन समय में मानसिक शक्ति बनकर हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आशा एक भावना है और सोचने का एक तरीका भी। कई बार जब हम हर तरफ से थक हार चुके होते हैं, हमें आशा की कहीं कोई एक किरण कहीं ना कहीं से किसी बाहरी कारण से भी मिलती है, तब हम फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। मुश्किल हालातों से उबरने में आशा की ज्योत जलाए रखना बेहद ज़रूरी है। आशा को हमें एक इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आशा एक भावना है, एक मानसिकता है, जिसके ज़रिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन और प्रतिकूल क्यों ना हो, आशा एक विश्वास ही तो है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।

आशा का अर्थ है आगे बढ़ते रहना, हिम्मत बनाए रखना और जीवन के अर्थ के साथ हर मुश्किल से उबरने का रास्ता खोजना। आशा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के बहुत कठिन समय में भी सहारा दे सकती है। यदि हम किसी विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम सकारात्मक निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। कभी कभी हमारे दिलो दिमाग पर भय और निराशा आशा से कहीं अधिक आसानी से हावी हो जाती है। ये डर हमारे आशा के भाव को कमजोर करने लगते हैं। हालांकि हम अक्सर आशा को व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, लेकिन आशा को सामूहिक रूप से भी अनुभव किया जा सकता है। राष्ट्र पर जब कोई संकट का समय आता है तब आशा और विश्वास का दामन थामे रहना आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आशा हमें भविष्य के लिए बेहतर कल्पना करने और उसे पाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करके जीवन को खूबसूरत बनाए रखती है, जिससे निराशावादी सोच दूर रहती है।

से मन मस्तिष्क बेहतर ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए कि आशा अपने आप नहीं मिलती, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है और इसे बनाए रखने के लिए हमें स्वयं से परे भी जुड़ना पड़ता है। आशा स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली औषधि भी हो सकती है। इसीलिए चाहे हम किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हों या चुनौतियों से जूझ रहे हों, पहले से कहीं अधिक आशा की जरूरत है ताकि हम मजबूती से टिके रह सकें। आशा की एक किरण जीवन की मुश्किलों, असफलताओं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है, जिससे व्यक्ति हार नहीं मानता। आशावादी दृष्टिकोण से जीवन में बदलाव आते हैं और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आशा हमें जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। आशा ही जीवन की वो धुरी है जिस पर सुखद भविष्य की कल्पना टिकी रहती है। ये हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां सुधर सकती हैं और आगे चलकर सब ठीक हो सकता है।

दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते समय यदि मन में आशा हो तो मस्तिष्क अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। आगे बढ़ते रहने की ये इच्छा शक्ति, जिसे हम उम्मीद या आशा कहते हैं, ये जीवन को गति प्रदान करती है। इसीलिए आशा को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। आशा रखने

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत विधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
4: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गयाजी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल

0: लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिले। स्वेरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। AICC महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को

0: संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिनाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना।

0: कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।

0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना बना के देखो ये फिल्म का नाम है। आशा भोंसले और साथियों की आवाजें, SH बिहारी की बोल, संगीत है रवि का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान जो शहीद।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आजाद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बाजे घुंघरू फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाज़ों में, शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत है डी दिलीप का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बनारसी ठग इस फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर की आवाज़, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून

0: सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी मीत, शिवांश, अनूप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फतेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो हैं गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

मनचाही गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं की पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाज़ों में, इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी।
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
1: हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा बड़ किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के 2-3 अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट कर

0: दिया गया।
1: ओह डॉक्टर रामदास, गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
2: गुड मॉर्निंग बेनी, गुड मॉर्निंग।
3: कभी तबीयत कैसी है?
1: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं, अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे, वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
1: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
2: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
1: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
2: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है।
3: अरे
2: ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
1: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
2: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है,
1: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
2: अच्छा,
1: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
2: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
0: नमस्ते डॉक्टर।
2: ओ नमस्ते,
1: कहाँ गई थी तुम?
0: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
1: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
2: भाई पत्नी जो ठहरी उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
1: हम दोनों के लिए।
0: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
1: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
2: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ हूं, फिर मिलेंगे।
1: अच्छा,
0: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं? हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं।
1: इसमें हर्ज क्या है, सच तो यही है ना?
0: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
1: इसमें शर्म का है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है? देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
0: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें, इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ, शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: तेजी, इधर आओ ना।
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: अरे, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। लेट जाओ बेनी, लेट जाओ ना तुम। अरे, तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिरी ना से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।

0: बेनी एक बात बताओ।
1: पूछो।
0: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
1: बताऊं? दोनों।
0: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
1: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: तो आप कलाकार भी हैं?
1: कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
0: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ। तुम बेनी हो ना?

0: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
1: हाँ मैं लॉरेंस हूँ भाई।
0: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
1: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
0: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका
1: और
0: लॉरेंस।
1: मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बिनी।
0: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
1: तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ?
0: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
1: यही कोई 14 या 15 साल।
0: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में।
1: Exactly.
0: गजब की यादाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
2: नमस्ते।
1: नमस्ते, नमस्ते। तो मैं देखते ही समझ गया था
2: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
1: सब वो बातें रहने दीजिए आप। बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
0: चेस्ट में पेन है।
1: हाँ हाँ।
0: दिल की तरफ भी पेन है।
1: वाई सी।
0: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
2: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
1: हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
2: जी,
1: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
2: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
0: डेजी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
1: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
0: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
1: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
0: ओके, बाय।
2: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
0: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
2: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
0: अरे गिरिजा, तुम
2: आप यहाँ?
0: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
2: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
0: जरा शिष्टता से बात करो।
2: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
0: जरा आहिस्ता बोलो।
2: मुझे पहचान लिया आपने?
0: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
2: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
0: तुम ऐसा सोचती हो?
2: सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
0: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
2: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी।
0: है?
2: इसका दर गिर तो नहीं गई हूँ?
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
2: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
0: क्या?
2: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
0: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
2: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक टेरर थे। टेरर?
0: मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है?
2: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
0: तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
2: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
0: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज आज चुप हो जाओ।
2: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
0: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
2: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए।

0: रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती, मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
1: मुझे कुछ नहीं कहना है।
2: लेकिन मुझे तो कहना है। कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूं।
1: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
2: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
1: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
2: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
1: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
2: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया। बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
1: अच्छा।
2: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
1: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
2: कितने रुपए खर्च हुए?
1: करीब 600। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
2: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकती हो। डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
1: क्या?
2: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
1: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
2: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरिजा। मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
0: गिरिजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
3: वो बेनी कहाँ है?
0: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
3: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
0: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
3: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है। वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना। मेजर ऑपरेशन है लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
0: डॉक्टर, डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
3: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
0: डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
3: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
0: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है
3: डॉक्टर। धीरज रखो डेजी, धीरज रखो। बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अरे लो, बेनी आ रहे हैं। आइए आइए।

0: जनाब।
1: ओ डॉक्टर
0: भाई, जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। हा?
1: इस पैकेट में क्या है? बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया?
0: भाई रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
1: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
0: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
1: लॉरेंस ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
0: और हाँ बेनी एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब, सी यू अगेन, बाय।
2: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
1: तुम्हारे लिए एक चीज है।
2: अच्छा देखो तो।
1: लो देख लो।
2: ये अब काहे को, और यहाँ
1: मेरी ओर से प्रेजेंट।
2: प्रेजेंट?
1: तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
2: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
1: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है, ऐसा मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर साड़ी पसंद आई?
2: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
1: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़ी ना समझ हो, तुम अगर ऐसी ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं रो मत। देखो अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो रूठ जाओ। नहीं नहीं ना। अच्छा तो फिर हंस दो। देखो ये ऐसे ऐसे।
2: अरे क्या क्या हुआ आपको? यहाँ लेट आइए। कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा। लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से धर गया।
3: ओह नो।
2: सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
3: आखिर ये हुआ कैसे?
2: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा। सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई।

0: जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
1: डेजी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
2: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
1: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
2: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई, मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
1: ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे पेड़ी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
2: गिरजा
1: डेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठकर बातें करेंगे।
0: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस, विवाह सूत्र में बंध गए।
3: अच्छा?
0: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
4: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
5: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
6: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी। और
7: जी, विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। गर्मी बहुत बढ़ गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह द्वारा जारी, ढीले और हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, धूप में निकलते समय छाता, टोपी, कैप, तौलिया या सिर से ढकने के पारंपरिक साधनों का उपयोग करें, बाहर जाते समय चप्पल या जूते अवश्य पहने, अपना ढेरों ध्यान रखें।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह, शरीर को ढक कर रखें, गर्मियों गर्मी बहुत बढ़ गई है, अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, रेडियो सुने, टीवी देखें, समाचार पत्र पढ़ें और स्थानीय मौसम की जानकारी लेते रहें, यथा संभव घर पर छायादार स्थान पर रहें। जी, विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज़ ऑन AIR।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। एक अच्छा रोल मॉडल कैसे बने? क्या आपने कभी ऐसा बॉस के साथ काम किया है जो बहुत ज्यादा दबाव में होने के बावजूद शांत और सकारात्मक रहता हो? शायद आपने ऐसे सहकर्मी के आदर्श माने हो जो हमेशा दूसरों के लिए कुछ ज्यादा ही करता हो। अब विचार करें कि दूसरे आपके व्यवहार को किस तरह देखते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक अच्छे रोल मॉडल हैं? आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन आपके कार्य, दृष्टिकोण, नजरिया और नैतिकता संभव आपके टीम के सदस्यों को प्रभावित कर रहे हैं और उनके द्वारा प्रतिबिंबित हो रहे हैं। आज के इस लम्हे प्रोग्राम में हम एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लाभों पर चर्चा करेंगे तथा ये भी कि आप एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लिए क्या कर सकते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन है कि एक रोल मॉडल क्या है, होता कौन है? मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके विकास करते हैं। विशेष रूप से बंडूरे ने पाया कि व्यवहार नीचे की ओर बहता है। दूसरे शब्दों में एक समूह अपने नेताओं से संकेत लेता है। इसीलिए यदि आप ईमानदारी और खुलेपन जैसे मजबूत गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो आप अपने टीम के सदस्यों को भी इसी तरह से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन जो लीडर बुरे व्यवहार का अभ्यास करते हैं या उसे पुरस्कृत करते हैं, वे ऐसे संस्कृति विकसित करने की संभावना रखते जिससे व्यक्ति टीम के हितों से पहले अपने हितों का प्राथमिकता देता है। अपनी टीम के लिए आदर्श बने मेरे दोस्तों। अच्छे रोल मॉडल का अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनका व्यापक सम्मान किया जाता है। संगठन ऐसे नेताओं को चाहते हैं जो दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। इसीलिए अच्छे रोल मॉडल को पदोन्नति के लिए सबसे पहले विचार किया जाता है। उन्हें संगठन में गठबंधन बनाना भी आसान लगता है क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत ब्रांड मजबूत होती है। यदि आप एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लिए कदम उठाते हैं, आप संभवतः एक अधिक प्रभावी टीम और व्यवसाय बना पाएंगे और आप अपने करियर को भी बढ़ावा देंगे। अच्छे रोल मॉडल आमतौर पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व लक्षण या गुण प्रदर्शित करते हैं जैसे आत्म जागरूकता, सकारात्मकता, विनम्रता, सहानुभूति, व्यवसायिकता और ईमानदारी। आइए इनके बारे में अधिक विस्तार से जानें आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। दोस्तों, आत्म जागरूकता, क्या आप जानते हैं कि आप कार्यस्थल पर क्या भूमिका निभा रहे हैं? आप अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाकर इसका पता लगा सकते हैं। ये आपके व्यवहार और दूसरों पर आपके प्रभाव पर ईमानदारी और उत्पादकता से विचार करने की क्षमता है। एक बार जब आप खुद को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आप आत्मनियंत्रता और आत्मनियम भी विकसित कर सकते हैं और इस तरह से अपनी भावनाओं और भलाइयों का प्रबंधित करके आप जो करते हैं और जिस तरह से करते हैं उसे अपने मूल्य के साथ संरेखित करने की क्षमता रखेंगे तो आप खुद के प्रति अधिक सच्चे होंगे और दूसरों को अधिक सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। बदले में आपके संभवतः सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। नकारात्मक लोग उन लोगों को नीचा गिरा देते हैं जिन्हें उनके साथ काम करना होता है। इसके विपरीत सकारात्मक दृष्टिकोण एक ऊर्जावान काम करने वाली टीम भावना विकसित करने में मदद कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हर समय खुश नहीं रह सकता, लेकिन आप मुश्किल परिस्थितियों में अवसरों की तलाश कर सकते हैं। इसीलिए इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी टीम किसी भी स्थिति में क्या कर सकती है, न कि इस बात पर कि वो क्या नहीं कर सकती है, और उन सफलताओं पर निर्माण करने में उनकी मदद करें। अच्छे रोल मॉडल विनम्रता का अभ्यास करता है। जब उन्हें यकीन नहीं होता कि क्या करना है तो वे ईमानदार होता है, सवाल पूछने और सीखने में खुश होता है, वह अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने में सहज होता है, वह जहां भी श्रेय देना चाहिए देता है और वे रैंक या अनुभव के पीछे

मानक पर रखना। इसमें सिर्फ काम पूरा करना ही शामिल नहीं है, ये ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे गहरे व्यक्तिगत गुणों को दर्शाता है। आप अपनी व्यक्तित्व को कुछ सरल कार्यों से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे समय पर बैठक में पहुंचना, उचित ढंग से कपड़े पहनना और बातचीत करना, तथा विश्वसनीय और कर्तव्यनिष्ठ होना। ईमानदारी का मतलब है सही कारणों से सही काम करना। भले ही इसका मतलब सबसे आसान विकल्प न अपनाना हो, अगर आप ईमानदार और प्रामाणिकता और नैतिक नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं, तो आपकी टीम के सदस्य संभवतः अच्छे टीम वर्क की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता का साथ प्रतिक्रिया देंगे। ईमानदारी के साथ जीना एक अच्छे रोल मॉडल बनने की आधारशील है, क्योंकि ये उन गुणों में से एक है जो व्यक्ति और संगठन अपने नेताओं में सबसे ज्यादा तलाशता है। इस महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारा प्रोग्राम लम्हे सुनते रहिए आपके आरजे चेतन से। आपके पास एक अच्छा रोल मॉडल बनने के लिए जरूरी गुण हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रभाव के लिए व्यवहार में कैसे लाएंगे? अपनी टीम के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना। किसी भी रोल मॉडल के लिए मजबूत संचार कौशल महत्वपूर्ण है। वे आपको उच्च गुणवत्ता वाले कनेक्शन को बढ़ावा देना और विश्वास और सम्मान के आधार पर संबंध बनाने में मदद करेंगे। अपने संगठन के मूल्य का समर्थन करना। अच्छे रोल मॉडल अपने नियुक्त के काम करने के वंचित तरीकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना और अपने टीम के सदस्यों के व्यवहार को उसके अनुसार निर्देशित करते हैं। उदाहरण के लिए, आप कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के लिए स्वयं सेवक बन सकते हैं। ये किसी सहकर्मी के समावेश और जुड़ाव का समर्थन कर सकते हैं। उन्हें प्रासंगिक कर्मचारी संसाधन समूह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके, यदि वे मौजूद हैं, आप किसी भी बुरे व्यवहार से तुरंत और प्रभावी ढंग से निपटना भी सुनिश्चित करेंगे। सहयोगात्मक रूप से काम करना। अच्छे टीम खिलाड़ी अपने अहंकार को किनारे रखते हैं और समूह की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक रोल मॉडल के रूप में ये एक ऐसे रवैया है जैसे आप निश्चित रूप में अपनाएंगे। एक कौशल मैट्रिक्स बनाइए और अपने लोगों की ताकत, कमजोरियां और पसंदीदा कार्यशैली का आंकलन करें। फिर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त टीम की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपें। आप सभी अधिक सफल होंगे। नवाचार का समर्थन करना। जब नए कौशल हासिल करने और नए तकनीकों को अपनाने की बात आती है, तो नेतृत्व करें जो आपके व्यवसाय में मदद करेंगे। एक रोल मॉडल के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप वक्र से आगे रहें। पहल और रचनात्मक दिखाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें। टीम के सदस्यों को स्वनिर्देशित और सामाजिक सीखने के लिए समय दें और आकांक्षाओं को व्यवहारिक कार्रवाई में बदलने के लिए उपकरणों का उपयोग करें। विद दिस वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे इन लम्हे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla, spice.lamhe.vanilla। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, जी विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए सुनिए एक विशेष सूचना। इस समय अत्यधिक गर्मी है, कृपया अपना ध्यान रखें, शरीर में पर्याप्त पानी बनाए रखें, प्यास न लगने पर भी पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। प्यास लगना शरीर में पानी की कमी का सही संकेत नहीं है,

यात्रा के दौरान पीने का पानी अपने साथ अवश्य रखें। ORS का उपयोग करें तथा नींबू पानी, छाछ, लस्सी, फलों का रस जैसे घरेलू पेय पदार्थ लें। तरबूज, खरबूज, संतरा, अंगूर, अनानास, खीरा, सलाद आदि का अत्यधिक सेवन करें और सब्जियां खाएं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान बहुत अधिक हो जाए या पानी आना बंद हो जाए तो उसे तुरंत टोल फ्री नंबर 112 पर कॉल करें।

0: लीजिए सुनिए कार्यक्रम पिटारा। पिटारा के अंतर्गत आप सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज।
1: तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो। तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए। अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
2: बहुत तो दुखद घटना है।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
2: नहीं आप बहुत अच्छा नृत्य की हैं उस जोगीरा में, और हमने देखा
1: जोगीरा में मार खा के की हूं।
2: अच्छा, वो किस्सा भी जरा बता दे।
1: वो ये था, बद्री जी थे
2: जी
1: हमारे डांस डायरेक्टर
2: जी,
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी।
2: अच्छा,
1: तो मैं तो नहीं थी। तो उसमें एक स्टेप है ना थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम और घूम के आना था। मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं तीन चार दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना। लेकिन डंडा मारा पैर में, एकदम ठीक कर दिया मैंने।
2: अच्छा, एक डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते
2: लाठी के भूत,
1: लाठी के भूत। मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी।
2: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया,
1: और क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
2: हाँ,
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक कटक के डांस किया उसने। फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
2: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप एक सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में।
2: अच्छा,
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे। तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ। तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
2: अच्छा,
1: ये है, ये फ्रेम है। ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर कैमरे की, तो यही सचिन। और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ, उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सब बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
2: अच्छा,
1: तो दो तीन चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है।
2: हाँ,
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती है। तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया
2: जी।
1: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
2: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में।

0: आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात, एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए, तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज़्यादा हो गया, कम हो गया, पर जो चीज़ है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम, मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो, पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को, हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है, और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
0: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए, ऐसा आपका कहना है। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है, ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
1: एक
0: ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
1: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना,
0: हाँ
1: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
0: जी,
1: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी
0: जी,
1: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता, नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
0: जी,
1: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव, कुछ आवाज़ नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूँ
0: जी,
1: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
0: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
1: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ, ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ।
0: हाँ, जी जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो साधना जी हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं, तो मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए।
1: अच्छा, ऐसा
0: जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो
1: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं,
0: वो उसका संगीत कितना
1: खूबसूरत और बहुत मीठा संगीत है,
0: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं खूबसूरत सा नगमा।
2: कुछ दिल

0: कुछ भी नहीं।
1: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं। तो
2: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए।
1: अच्छा।
2: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी
1: जी।
2: तो बड़ा गंदा सा पैच था।
1: अच्छा।
2: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी, और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं।
1: हाँ,
2: तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है।
1: जी, जी जी।
2: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
1: जी।
2: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है
1: जी।
2: तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा
1: जी।
2: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
1: नई
2: प्रोडक्शन में
1: जी, जी।
2: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है।
1: हाँ।
2: बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
1: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे?
2: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।
1: अच्छा।
2: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं
1: जी।
2: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत
1: आदतन सारा लड़कियों से गिरी रहती थी।
2: हाँ, तो टाइम निकल जाता है। बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
1: जी।
2: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है। तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पे।
1: हाँ। नहीं वैसे आप बहुत हॉट है, शॉल की जरूरत नहीं। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद जी।
2: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
1: जी,
2: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकराभरणम फिल्म आई थी
1: जी,
2: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकराभरणम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में

0: जी
1: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह, हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल
0: नीचे का जी।
1: लेकिन वो ले गए
0: जी
1: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम। मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन टू मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं,
0: वही तो सेम फिल्म,
1: हाँ सेम फिल्म, लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल। मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूँगी जुड़ना ऐसी फिल्म
0: जी,
1: से
0: जी।
1: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहाँ पे
0: जी,
1: साउथ में सरगम ये सब उन्होंने बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन
0: बोलती
1: आंखें, हाँ तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
0: जी,
1: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद, हाँ
0: जी जी उसके बाद ही,
1: हाँ तो मस्ती में की बस और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
0: जी,
1: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
0: अच्छा,
1: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
0: जी,
1: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, तो वो फिल्म की। उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के दादी बन के चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
0: हाँ।
1: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी फिर बच्चों को देखना ये सब
0: जी, जी।
1: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो पिछले 5 सालों की जुगनी
0: जी, जुगनी
1: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
0: बहुत
1: देखे
0: अच्छी
1: है
0: जी।
1: तो ये नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब, तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
0: जी।
1: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल।
0: अच्छा,
1: हाँ तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके। दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं,
0: मिलके काम कर, पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं।
1: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है, तो उन्होंने मुझे बुलाया आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ, तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
0: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
1: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
0: अच्छा,
1: हाँ क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे
0: हाँ।
1: कि ऐसा ही करना है, और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी
0: जी। हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा,
1: पति का नाम राजकुमार
0: ही नहीं राजकुमार आ गए वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
1: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
0: अच्छा, मैं हम जानना चाहते हैं वो किस्सा
1: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा नहीं करूंगी, तो ये बिहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है, तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम
0: हाँ।
1: और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने
0: जी।
1: तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने, इनकार में जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो मैंने कहा ओ गॉड।

0: क्या आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं, कभी दाढ़ी रख के आ जाते हैं। इनको इतना गुस्सा है, बोले शादी करके बताता हूँ इसको कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली।
0: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर।
1: हाँ।
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
1: अच्छा,
0: फिर
1: मेरी वही लड़की हीरोइन चाहिए। हाँ। थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी।
0: होता ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
0: ये रात भीगी भीगी।

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की है,
0: वो वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी,
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना इस एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई वो
0: जी,
1: जो कि ब्लॉकबस्टर आज भी ब्लॉकबस्टर है। तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से
0: जी,
1: गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैंने काम किया
0: जी,
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको
0: इतना लाइक ही तो नहीं लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी जी, लेकिन
0: बहुत प्यारी है।
1: हाँ, वो
0: बहुत अच्छी फिल्म जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहाँ की भाषा है उस भाषा में आ जाती। ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी?
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा
1: हमें अपनी जो बाइयाँ आती थी उन सबसे तो
0: मतलब वो चाट और लस्सी
1: खाते पीते हाँ जी, क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। सिर्फ मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने।
0: अच्छा,
1: कि मुझे आनी चाहिए क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
0: सरदार खड़े हैं और
1: तो हमारा पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा,
1: हाँ, हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबाद

0: जी
1: हाँ, ये काफी फर्क है।
0: जी
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए, अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या,
0: अच्छा,
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ, जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है, वो गीत हम सुनाना चाहेंगे।
1: देखिए, कौन दिशा में तो सब गाते ही हैं,
0: जी
1: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे, चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी, और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था, चंदन चंदन ऐसा,
0: बहुत अच्छा।
1: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है गाना।
0: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इस गीत के?
1: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
0: रविंद्र जैन वहां पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे,
1: हाँ,
0: गाया जा
1: रवि
0: रहा
1: जी,
0: होगा,
1: हाँ,
0: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते
1: बहुत
0: समय?
1: अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा, अगर आप
0: जी, बहुत
1: ये,
0: खूबसूरत गीत
1: हाँ,
0: है।
1: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था, और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे,
0: जी,
1: और आज तक मैं बहुत बहुत ज़्यादा इसको पसंद करती हूँ।
0: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद?
1: बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो।
1: बट जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे।
1: भैया मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था, उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है।
0: 30 गाने
1: में, और सुना रहे थे ये पसंद है नहीं है, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़िए नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है। साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी ना
0: जी,
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, माय गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
0: शब्द भी लिख लेते थे
1: एक सेकंड में
0: 30 गाने एक समय पे,
1: 32 होंगे 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
0: लगा।
1: दादा कह रहे नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल, शुरू कर दिया। तो उनसे,
0: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
1: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं, और सचिन, हम लोग ने बहुत शोज किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता।
0: ये रविंद्र जी ने
1: आपसे, क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे, और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
0: जी। और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो आनंद ही अलग आता होगा।
1: वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है।
0: अच्छा,
1: तो आई थिंक वो अक्खड़पन में सब कुछ सीख गई। अल्लड़पन कहते ना,
0: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई बचपन से।
1: ये बात है, मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
0: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, लगेगी तो संभाल लेना। बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या चले गए ऐसे ही घूमते?
1: नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो

0: मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, कि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अब शूटिंग भी करेगी।
1: हाँ।
0: तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था।
1: अच्छा।
0: नॉट फ्रॉम माई हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें। लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को। और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो।
1: अरे वाह।
0: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी।
1: हाँ।
0: तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने बोल दिया। तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो।
1: तो, यानी आपको हाँ, मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों जगह।
0: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
1: जी,
0: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहें
1: जी। बिल्कुल। साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है। पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है?
0: नहीं नहीं, मेरा बेटा तो बहुत दूर है।
1: अच्छा।
0: उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
1: जी।
0: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की हैं
1: जी।
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
1: जी,
0: अनुपम जी ने,
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर, जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
1: हाँ, तो उस समय वो चल,
0: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना, कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है। आपने हीरोइन किया है तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
1: मतलब तो, उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
0: नहीं, मैं करती भी नहीं, क्योंकि
1: मेहनत करो अपनी।
0: हाँ, अपनी मेहनत करो,
1: ये बहुत अच्छी बात है।
0: क्योंकि मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
1: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
0: बिल्कुल करूँगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना, ये सुपर 30
1: जी,
0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोले 100%।
1: हाँ।
0: अब देखते हैं क्या होता है।
1: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया।
0: हाँ।
1: और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती है।
0: हाँ। ऐसा
1: हम मान के चलते हैं। बिल्कुल, ये जगह बड़ी बड़े पवित्र लोग यहाँ पर आए हैं।
0: हाँ,
1: आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है यहाँ की।
0: हाँ, लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं
1: जी,
0: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते ना। बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ,
1: ऊर्जा सकारात्मक।
0: हाँ, वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है।
1: हाँ।
0: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में हैं, या मुझे फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊँ या मर जाऊँ।
1: अरे
0: हाँ, मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीज है कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था।
1: क्या बात है।
0: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं,

0: खुश दिखूं, खुश बोलूं और एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई हैं तो कुछ गाने हम
0: मैं
1: भी सुन लें।
0: कोशिश करती हूँ जी। चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है
1: जी।
0: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज से सीखा है
1: जी।
0: उनका एक गाना गा देती हूँ
1: जी।

पुकारता चला हूँ मैं गली गली पहाड़ की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली पहाड़ की, बस एक

0: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर दो घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं
0: जी।
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ, हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम ये होता ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी नहीं,
1: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती माए
0: जी।
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी, कर्मा है ना वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें, 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई
0: जी।
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है।

0: लेकिन उसको एहसास नहीं है।
1: हाँ।
0: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक कच्चे धागे करके, और साड़ियाँ वीव्स वगैरह। मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है ये, ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है, कैसी है पहेली,
1: जी
0: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। बहुत
1: अच्छा।
0: सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है,
1: अरे वाह,
0: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो
1: क्या बात
0: मैं
1: है।
0: चाहती हूँ कि ये सब देखें,
1: फिल्म है कैसी है पहेली,
0: कैसी है पहले।
1: जरूर से हम
0: हाँ
1: सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है।
0: हाँ
1: और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आए, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
0: अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है। विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
1: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा लगता है
0: लगा
1: विविध भारती में जब आप
0: बिल्कुल।
1: आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है, तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉबी टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूं हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूं विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हां, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: जी, विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: लीजिए सुनिए कार्यक्रम छाया गीत।

हम चल रहे थे राह जिंदगी पर अकेले और खामोश, तुम क्या मिले राही बनकर कि जिंदगी को एक नया अफसाना मिल गया। इस अफसाने में है दीवानगी, इसमें है दरिया की रवानगी।

तुम्हारे सामने आते ही शब्द खो से जाते हैं, जुबान रुक से जाते हैं कहीं। जब तुम ही बसे हो इन निगाहों में, तो क्यों ना इन नजरों से ही मोहब्बत का अफसाना लिखा जाए। चाहत की ये दास्तां आखिर क्यों सुने कोई और, ये राज़े मोहब्बत तो बस दो दिलों के दरमियां ही महफूज रहे।

जिंदगी की राहों पर साथ चलते हुए बढ़ता जाता है मोहब्बत का अफसाना। इस अफसाने में कभी मौसम और कभी महकती रातों की बातें, तो कभी बिखरी जुल्फों और काली घटाओं की बातें होती है। यही अफसाना कभी कलियों का दिल बनकर धड़कता है, तो कभी शमा पर परवाने की प्रीत झूमने लगती है, गाने लगती है।

मोहब्बत के अफसाने में बस प्यार की ही बातें हो, ऐसा तो नहीं होता। इन अफसानों में तो झगड़े भी होते ही रहते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार नायिका ही रूठे और नायक उसे मनाए। कई अफसाने तो ऐसे भी बने हैं जिसमें नायिका ही अपने नायक को मनाने में लगी है। पर जो भी हो, हर अफसाने के अंजाम में सारी शिकायतें दूर हो ही जाती है, और तब तब दिल गा उठता है कोई प्यार भरा गीत।

अफसाना आज का नहीं है दोस्तों, ये अफसाना बहुत पुराना है। इस अफसाने में है बचपन की शरारतें, इसमें है बचपन की दोस्ती जिस पर आगे चलकर मोहब्बत का रंग चढ़ा। बिना बात के वो रोटना, वो मनाना, वो साथ साथ कविताएं पढ़ना, सावन के वो झूले, गर्मी की वो रातें, और हम अपनी छत से करते थे एक दूसरे को इशारे। इन हसीन यादों से ही तो बनता है हमारा ये छोटा सा प्यार भरा अफसाना।

ये दिल लिखता तो चला जाता है जिंदगी के अफसाने, पर ये काम इतना आसान कहाँ। अफसाने के किरदार ही इसे रातों को जगाते हैं। इन तमाम अफसानों में एक है मोहब्बत का अफसाना, जिसके होते हुए जमाने का कोई भी अफसाना भला कौन पढ़ना चाहेगा। और इन किरदारों में है एक ऐसा चेहरा जो हम सफर है इस अफसाने का। जब साथ हो इसका तो भला दुनिया से क्यों डरा जाए। जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी राहों से गुजर कर अपनी मंजिल

अफसानों की ये बातें आप सुन रहे थे छाया गीत के सफर में, अपनी हम सफर ज्योति के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
3: तराने नए पुराने।
0: तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं, आपके रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म हीर राजा के गाने से। लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान।

आशिकी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में रानी मलिक के बोल थे, नदीम श्रवण का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। चलिए अब सुनते हैं जिंदगी जिंदगी फिल्म का गाना सचिन देव बर्मन की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: हम बोल रहे हैं विविध भारती से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

ये आकाशवाणी है, अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया

0: नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग, और ये है मुल्क फिल्म की कव्वाली, शफकत अमानत अली और साथियों की आवाजों में शकील आजमी के बोल, अनुराग साइकिया का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है

0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।

0: तराने नए पुराने
1: जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अब आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में सुनिए आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अभिनेता पंकज कपूर द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम का प्रसारण होगा 7 बजे से। जिज्ञासा कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:45 पर। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे सुनो कहानी के अंतर्गत प्रेम का मूल्य, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। चित्रलोक कार्यक्रम रात 8:15 से, आपके लिए ये कार्यक्रम रात 9 बजे। पार्श्व गायक के द्वारा प्रस्तुत आज के फनकार कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:30 पर। छाया गीत कार्यक्रम रात 10 बजे। ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम रात 10:30 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 6:05 पर कार्यक्रम वंदन वार। 6:35 गान सुबह 6:35 पर। 6:45 पर संकी सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला विविध भारती के खजाने से। गायिका आशा भोसले से बातचीत होगी, यही कार्यक्रम शाम 6:45 पर भी आप सुन सकते हैं।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुबह 7 बजे से हमारा ही प्यार के ये कार्यक्रम 7:30 पर त्रिवेणी कार्यक्रम सुबह 8:15 पर और दिन में 2 बजे चित्रलोक कार्यक्रम सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार अनिल विश्वास पर।

दिन में 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 12:05 पर। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 1 बजे से। सदाबहार नगमे, दिन में 2:30 पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम, दिन में 3 बजे। दिन में 3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग। निर्देशक हैं भारत रत्न भार्गव। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, इस कार्यक्रम में सुनिएगा कवि प्रदीप की सुपुत्री और चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। छाया गीत कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण शाम 5 बजे। तराने नए पुराने कार्यक्रम शाम 5:30 पर।

शाम 7 बजे विशेष जयमाला के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल चांद बख्शी की शौर्य गाथा। रात 8 बजे हवामहल कार्यक्रम में नाटिका मूड का प्रसारण होगा। लेखन निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार राज खोसला पर। छाया गीत कार्यक्रम रात 10 बजे। झरोखा में ये थी रूपरेखा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुने कार्यक्रम संध्या रंजन।

0: पुष्पांजलि फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। अब आज का संध्या रंजन कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा की जा रही है। आज प्रस्तुत है राग भैरवी।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं महाराजा स्वाति तिरुनाल के हिंदी रचनाओं के बारे में कहती आती रही हूँ। आज इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी है और इसका समापन मैं राग भैरवी में एक बंदिश से करूं तो बहुत ही उचित होगा। कल भी मैंने भैरवी में महाराजा स्वाति तिरुनाल की एक रचना सुनाई थी जो भजन के रूप में था। आज जो भैरवी कृति सुना रही हूं वो दादरा ताल में है और ज़्यादा प्रचलित है। मैंने पिछले अंक में कहा था कि श्री पद्मनाभ अर्थात विष्णु महाराजा स्वाति तिरुनाल के कुल देवता माने जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं

कि वे शिव पूजा से दूर रहते थे। ये जो कृति मैं गाने जा रही हूँ न केवल काशी विश्वनाथ जी के बारे में है। स्वाति तिरुनाल कहते हैं, चलो मन तुम काशी, जहाँ सुंदर और पवित्र गंगा नदी बहती है, पंडित और साधु लोग पूजा पाठ में मग्न रहते हैं, और जहाँ त्रिभुवन पालक श्री विश्वनाथ जी विराजमान हैं। विष्णु भक्त हो या शिव भक्त, स्वाति तिरुनाल कहते हैं, भजले इन दो स्वरूप, रहिए अविनाशी। तो श्रोताओं सुनिए महाराजा स्वाति तिरुनाल की भैरवी राग में रचना विश्वेश्वर दर्शन कर।

श्रोताओं, अब मैं भैरवी के दो स्वरूप दिखाती हूँ आपको, एक कर्नाटक शैली में और उसके बाद हिंदुस्तानी शैली में। तो सुनिए पहले कर्नाटक शैली में भैरवी।

श्रोताओं, पिछली कड़ियों में मैं आपको कर्नाटक रागों के बारे में और स्वाति तिरुनाल महाराजा की कृतियों के बारे में कुछ बातें बताती आई हूं। तो इस श्रृंखला का समापन यहां करते हुए मैं आपसे विनती करती हूं कि ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, ज़रूर लिख के बताइएगा। अब सुनिए एक फिल्म संगीत

0: राग भैरवी पर आधारित ये गीत था। फिल्म दूज का चांद से आवाज थी मन्ना डे की। स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग भैरवी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

जी विविध भारती का मुंबई केंद्र है, एफएम 102.8 और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विशेष जयमाला।

फौजी भाइयों, फौज में भर्ती होने का जुनून इतना जबरदस्त था मेरे अंदर कि जब मैं छोटा सा था तो एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा अपने बचपन के बारे में। लड़ाई चल रही थी उस जमाने में, जाहिर है आप जानते हैं कि ब्लैकआउट होता है। ब्लैकआउट की वजह से हम लोग घर के अंदर नहीं सो पाते थे, पंखा नहीं चलता था, तो हम लोग छत पे सोते थे। मैं लुधियाने का रहने वाला हूं, खुली छतें होती हैं वहां पे, तो छत के ऊपर हम सोते थे। उन्हीं दिनों कुछ दिन पहले ही मेरी सालगिरह गुजरी थी, तो सालगिरह पर मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हें क्या चीज पसंद है, तुम अपनी सालगिरह पर क्या लेना चाहोगे। तो जाहिर है कि मेरे अंदर बड़े जबरदस्त जज्बात उठे और लड़ाई चल रही थी, और मैंने कहा कि साहब मुझे तो बंदूक चाहिए। साइकिल पर बैठ के मैं उनके साथ मार्केट में गया। खिलौने की दुकान से हमने एक बहुत बड़ी सी बंदूक खरीदी, वो कॉक वाली बंदूक जिसका पटाखा कुछ था ऐसे करके बजता। तो वो बंदूक लेकर हम घर लौटे, और रात के वक्त जब हम छत पे सो रहे थे तो वो बंदूक और वो कॉक का छोटा सा डब्बा मैंने बड़ी हिफाजत से अपने पास रखा, और रात में जब ऊपर आसमान पर जहाज आपस में

0: ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप यकीन मानिए कि वो कॉक फिट करके बंदूक मेरी उन जहाजों की तरफ ही रहा करती थी। तो इससे कम से कम आपको ये तो यकीन होगा कि वाकई मैं फौज में भर्ती होना चाहता था और देश के लिए कुछ करना चाहता था। खैर, ऐसे किस्से तो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता रहूंगा। चलिए तब तक एक गाना और सुन लेते हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

अपनी कोशिशों के बावजूद फौजी भाइयों, फौज में भर्ती होने की ख्वाहिश तो मेरी पूरी ना हो सकी, लेकिन बचपन से ही एक और चीज से मुझे बेहद प्यार था, एक्टिंग। तो आज एक्टिंग करने में मैं सफल जरूर हूं। कई सालों से एक्टिंग कर रहा हूं। पहले मैंने थिएटर में काम किया, अब भी थिएटर करता हूं, फिल्में भी करता हूं, टेलीविजन भी करता हूं। आप लोगों तक शायद कुछ फिल्में पहुंची होंगी, शायद एक टेलीविजन सीरियल करमचंद के नाम से मैं किया करता हूं, वो पहुंचा होगा, आपने देखा होगा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थिएटर के जमाने का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक शेर अफगन नाम का प्ले हम लोग दिल्ली में कर रहे थे। मैं उसमें शेर अफगन का रोल कर रहा था, और भी बहुत से किरदार थे। एक डॉक्टर का किरदार करने वाले साहब थे। शेर अफगन का आखिरी एक्ट चल रहा था, क्लाइमैक्स था, बड़े जोरों पे प्ले चल रहा था, ऑडियंस बैठी हुई थी, और ठीक आखिर में ये साहब मेरी एक लंबी स्पीच के बाद इनका एक जुमला था जो ये डॉक्टर साहब जुमला बोलना भूल गए। तो मैं ऑडियंस की तरफ मैंने पीठ की, इनकी तरफ पलटा, और मैंने इनसे कहा बहुत आहिस्ता सी आवाज में कि देखिए आप अपना जुमला भूल गए हैं, जरा बोलिएगा अपना जुमला। तो पलट के मुझसे कहते हैं अरे अब तो मैं बोल चुका हूं, चलिए आप खुद ही चला लीजिए अब आगे। तो फौजी भाइयों, जिस तरह आप सरहद के सामने होते हैं और हमेशा आपके ऊपर खतरा बना रहता है, इसी तरह जरा दूसरी तरह का, लेकिन हमारे लिए भी, जब हम ड्रामा कर रहे होते हैं, ऑडियंस के सामने नाटक करना और इस तरह की गलतियां होना उतना ही बड़ा जोखिम होता है। खैर, ये तो थिएटर के दिनों का एक छोटा सा किस्सा था, लेकिन फिल्मों की बात कर रहे हैं तो एक गाना और सुन लें, फिर आगे बातें होंगी, है ना?

0: दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। शागिर्द फिल्म का यह गीत मुझे बेहद पसंद है। इसका रिदम बहुत ही खूबसूरत है और लता जी ने इसको लाजवाब तरीके से गाया है।
1: विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
2: इस कार्यक्रम की प्रायोजक दियो दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज कपूर द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम।
2: लाला जी के गायन के बारे में कुछ भी बात कहना बहुत ही मुश्किल है। शायद सिर्फ इतना कहना काफी होगा कि लता जी के बिना हिंदुस्तानी फिल्म गायन शायद मुमकिन था ही नहीं। लता जी का नाम जब आप लेते हैं तो उनके साथ साथ एक और नाम जुड़ता है, मोहम्मद रफी साहब, जो मुझे बेहद पसंद हैं और बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब गायक रहे हैं। उन्हीं का एक गाना काला बाजार फिल्म से मैं आपको सुनवाना चाहूंगा।

विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

फौजी भाइयों, हिंदुस्तानी फिल्मों का म्यूजिक बहुत ही खूबसूरत होता है, ये बात हम सब हिंदुस्तानी जानते हैं। मेरे लिए प्रोग्राम पेश करना और इसमें 9 गाने आपको सुनवाना एक तरह से थोड़ी सी परेशानी भी थी। कौन से वो 9 गाने चुने जाएं जो मैं आपसे कहूं कि मुझे बेहद पसंद है? मुझे तो सैकड़ों गाने पसंद हैं, वो सब मैं आपको कैसे सुनवा सकता हूं? लेकिन इस प्रोग्राम का एक खास वक्त होता है जिसके दरमियान इस प्रोग्राम को खत्म करना पड़ता है, जिस वजह से मैं आपको वो सारे गाने तो नहीं सुनवा पाऊंगा जो मुझे बेहद पसंद है, लेकिन यही 8-9 गाने जो अक्सर मेरी जबान पर रहते हैं, जिनको मैं सालों से सुनता आया हूं और जिनको सुनना आज भी अच्छा लगता है, वो कुछ गाने मैं आपको सुनवा रहा हूं। एक गाना जो अब मैं आपको सुनवाने वाला हूं, वो मेरा ख्याल है आज से 15-20 साल पहले शायद मैंने पहली बार सुना होगा, लेकिन आज भी मैं उसे सुनता हूं तो वो उतना ही ताजा लगता है जितना कि पहली बार सुना था तब लगा था।

विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज कपूर द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। जब जब किसी

0: का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज कपूर ने।
1: एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। ये तब का किस्सा है जब थिएटर से मैंने सिनेमा में कदम रखा। सबसे पहली फिल्म मैंने श्याम बेनेगल साहब के साथ की थी। फिल्म का नाम था आरोहण। आरोहण की शूटिंग करने के लिए हम कलकत्ते से तकरीबन 200 किलोमीटर आगे गए। फिल्म में एक सीन था जिसमें गांव में बाढ़ आ गई है और बाढ़ आने की वजह से मैं वहां काम करता हूं और लोगों को मदद करने की कोशिश करता हूं। तो ये सीन फिल्माने के लिए श्याम बेनेगल साहब ने वहां पे एक डैम था उसको खुलवाने के लिए कहा। वो नदी तकरीबन हमेशा सूखी रहती है लेकिन डैम खुल जाने की वजह से, डैम के वो लोहे के दरवाजे जो होते हैं वो खुल जाने की वजह से तकरीबन एक डेढ़ घंटे के लिए कुछ पानी उस सूखी जगह पर आ जाएगा जिसे हम बाढ़ का इफेक्ट दे सकते थे। तो साहब हमने वो सीन शूट करना शुरू किया। लोहे के दरवाजे खुले, गांव के ही कुछ 200-300 लोग थे जो हमारी मदद कर रहे थे ये सीन शूट करने में। तो सीन ये था कि मैं और ओमपुरी साहब जो उस फिल्म के हीरो थे, हम दोनों इन गांव के लोगों की मदद कर रहे हैं, इन्हें इस बाढ़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो साहब एक डेढ़ घंटे में ये सीन शूट हो गया, दो कैमरे लगे हुए थे। शूटिंग खत्म होने के बाद मैं और ओमपुरी साहब उसी पानी में तैरते रहे काफी देर तक। अचानक तैरते तैरते हमें लगा कि अब हमें बाहर किनारे की तरफ जाना चाहिए। तो मुझे महसूस हुआ

मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, तो मैंने तैरना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पानी का बहाव उल्टा है। मैं किनारे की तरफ तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी मुझे पीछे की तरफ खींच रहा था। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद मैं एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे वो लोहे के दरवाजे दिखाई दिए जहां से पानी गिर के नीचे आता था। तो मैंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। मैं चिल्लाया तो वहां आसपास जो लोग खड़े थे उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। शायद एक सेकंड में बिजली की तरह मेरे दिमाग से यह ख्याल गुजरा कि अगर मैं इस वक्त किनारे पर नहीं पहुंचता हूं तो यह पानी मुझे खींचकर उन लोहे के दरवाजों के पास ले जाएगा, मैं उससे टकराऊंगा और डूब जाऊंगा। तो साहब, तीन चार बार चिल्लाने के बाद कोई एक दो लोगों ने मेरी तरफ गौर किया, एक आध शख्स कूदा भी और उन्होंने मुझे वहां से बाहर निकाल लिया। तो फौजी भाइयों, कहने का मतलब यह है कि जिस तरह आपको अपनी जिंदगी में जोखिम उठाना पड़ता है, वैसे ही हमारे काम में भी, एक्टिंग में काम करते हुए बड़े बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। तो फौजी भाइयों, अपने वादे के मुताबिक मैंने आपको बोर तो किया, लेकिन दूसरे वादे के मुताबिक आपको गीत सुनवाना अभी बाकी है। तो लीजिए ये गीत सुनते हैं।

फौजी भाइयों, हर एक अभिनेता की यह ख्वाहिश होती है कि उसकी ऑडियंस उसे प्यार करे, याद रखे और उसके अभिनय से उनका दिल कभी ना भरे।

0: फौजी भाइयों, इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे याद रखेंगे, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।
1: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज कपूर। ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी विविध भारती के संग्रहालय से।

0: देव दर्शन धूप।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री।
2: सुबह जलाओ शाम जलाओ
0: देव दर्शन धूप।
3: यह विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन।
4: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
3: मीना कुमारी।
5: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।
3: जीवन।
6: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था।
3: देव आनंद।
7: फौजी भाइयों, आपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए।
3: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला। आप हैं विविध भारती के संग।
8: जिज्ञासा।
3: जिज्ञासा। जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मई का दिन पूरी दुनिया में नो टोबैको डे यानी तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने सन 1987 में तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियों और मौतों की ओर सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। सबसे पहले 7 अप्रैल 1988 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया था। बाद में 1989 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया संकल्प पारित किया और हमेशा के लिए 31 मई को नो टोबैको डे के रूप में घोषित कर दिया गया। बस 1988-89 से हर साल इस दिन के लिए एक थीम तय की जाती है जो तंबाकू नियंत्रण के किसी एक पहलू पर फोकस करती है। पहले साल की थीम थी तंबाकू या स्वास्थ्य, इसमें से स्वास्थ्य को चुने। साल 2026 यानी इस बरस विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है आकर्षण का पर्दाफाश करना, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना, अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। दरअसल तंबाकू और निकोटीन इंडस्ट्री युवाओं को लुभाने के लिए अपनी मार्केटिंग में तरह तरह के आकर्षणों को शामिल करती है और युवा तंबाकू की चपेट में आते जा रहे हैं। तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल तकरीबन 95 लाख और भारत में तकरीबन 13.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। दुनिया भर में तकरीबन 1.2 अरब लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत में ये

तादाद 26 करोड़ से ज्यादा है। इसलिए तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में बताएं, उन्हें जागरूक बनाएं और दुनिया को तंबाकू मुक्त बनाएं। तंबाकू से जुड़ी बीमारियों की वजह से हर साल 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है और 2030 तक ये संख्या बढ़कर 80 लाख हो सकती है। अब दिक्कत यह है कि तंबाकू से होने वाली इतनी सारी बीमारियां हैं कि इन आंकड़ों को सही सही हासिल करना बड़ा ही मुश्किल काम है। एक औसत व्यक्ति जो धूम्रपान करता है वो सिगरेट पर तकरीबन 3.3 लाख रुपए सालाना खर्च कर देता है। कल्पना कीजिए कि इतने पैसों से आप जीवन के कितने बेहतरीन काम कर सकते थे, छुट्टियों का आनंद ले सकते थे, त्योहारों का आनंद ले सकते थे, अपने घर को बेहतर बना सकते थे, अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे। कुछ आंकड़े आपको हम बता रहे हैं। 1.2 अरब यानी 120 करोड़ लोग दुनिया भर में किसी न किसी तरह से तंबाकू का सेवन करते हैं। 80 लाख लोगों की मौत होती है तंबाकू से और पैसिव स्मोकिंग की वजह से 16 लाख ऐसे लोग होते हैं जो धूम्रपान खुद नहीं करते हैं पर दूसरों के धुएं के संपर्क में आने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये बहुत ही खौफनाक है। भारत में 26.7 करोड़ वयस्क लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और दुनिया में तंबाकू के सेवन के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। भारत में सिगरेट या बीड़ी की बजाय गुटखा, खैनी और जर्दा का चलन बहुत ज्यादा है और वयस्कों में इसका इस्तेमाल करने वालों का प्रतिशत है 21.4%, जबकि 10 करोड़ से ज्यादा लोग बीड़ी या सिगरेट पीते हैं। ये बहुत खतरनाक है। तंबाकू में 2500 से ज्यादा केमिकल तत्व होते हैं जिनमें निकोटीन के अलावा कई कैंसरकारी यानी कार्सिनोजेनिक तत्व शामिल हैं। कैंसर तंबाकू से होने वाली सबसे बड़ी बीमारी है। 45% कैंसर पुरुषों में और 20% महिलाओं में तंबाकू की वजह से होता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़े की बीमारी तो बहुत ज्यादा तंबाकू की वजह से होती है। विश्व धूम्रपान दिवस कल है 31 मई को और हम आप सभी को ये कह रहे हैं कि अपने परिवार में, अपने दोस्तों मित्रों में जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उन्हें इसके खतरों से आगाह करवाइए और उन्हें इस बात की कसम दिलवाइए कि वो तंबाकू छोड़ देंगे।

गर्मी के मौसम में तापमान लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा गर्मी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। गर्मी की वजह से पानी की कमी या डिहाइड्रेशन हो सकता है। शुरुआत में इसके लक्षण हल्के लगते हैं, लेकिन अगर नजरअंदाज किए जाएं तो हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जब मौसम बहुत गर्म और उमस भरा होता है, तब शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए ज्यादा पसीना निकालता है। पसीने के साथ शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं, और अगर हम पानी पर्याप्त मात्रा में ना पिए तो शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। बच्चों और बुजुर्गों और धूप में काम करने वाले लोगों और लंबे समय तक बाहर घूमने वाले लोगों में डिहाइड्रेशन अक्सर देखा जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से पेशाब कम आने लगता है, मांसपेशियों में ऐठन होने लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगना, मुंह सूखना, होंठ फटना, सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, थकान, ड्राई स्किन और गहरे रंग की पेशाब, ये लक्षण है डिहाइड्रेशन के। डिहाइड्रेशन अगर वक्त पर इस पर ध्यान न दिया जाए तो गंभीर हो सकता है। लंबे समय तक पानी की कमी रहने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ सकता है और इसका असर कई अंगों पर पड़ सकता है। इससे हीट एग्जॉस्टन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हीट एग्जॉस्टन यानी गर्मी से अधिक थकावट, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर, पसीना, सिर दर्द और बेचैनी महसूस होने लगती है, और अगर तुरंत आराम और पानी नहीं दिया तो ये स्थिति हीट स्ट्रोक में बदल सकती है, जो गर्मी की सबसे खतरनाक बीमारी है। इसमें शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता, जिससे तेज बुखार, दिल की तेज धड़कन, उल्टी, बेचैनी, बेहोशी और सांस लेने में दिक्कत शामिल हैं। इससे दिल, दिमाग और किडनी

को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गर्मी का स्किन पर भी बहुत बुरी तरह से असर पड़ता है। बहुत ज्यादा गर्मी और पानी की कमी की वजह से स्किन में सूखापन आ जाता है। सनबर्न, जलन और होंठ फटना भी बहुत ही नॉर्मल है। कई बार त्वचा की समस्या शरीर में पानी की कमी का संकेत होती है। गर्मी में पाचन से यानी हाजमे से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अपच, गैस, एसिडिटी, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग बढ़ जाता है। दरअसल लाइफस्टाइल की वजह से डिहाइड्रेशन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कई लोग लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं, ट्रैफिक में सफर करते हैं, काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि समय पर पानी पीना भूल जाते हैं। कई लोग पानी की जगह चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और शरीर को सही तरीके से हाइड्रेशन नहीं मिल पाता है। गर्मी के मौसम में पानी पीने के लिए प्यास का इंतजार नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से पानी पीना जरूरी है। एक वयस्क इंसान को दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, यानी 3-3.5 लीटर पानी दिन भर में होना चाहिए। सुबह से ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी और ORS भी शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं।

पानी एकदम से तेजी से नहीं पीना चाहिए, बल्कि एक एक घूंट पीना चाहिए। गर्मी में बहुत अधिक चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे कैफीन और इसमें जो चीनी है वो शरीर में पानी को बाहर निकाल देती है। नींबू पानी, नारियल पानी और छाछ, ये बहुत अच्छे उपाय हैं पानी शरीर में पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने के लिए। इसके अलावा तरबूज, खीरा, ककड़ी और संतरे जैसे ऐसे फल और सब्जियां जिनमें पानी बड़ी मात्रा में है, ये आपको जरूरी तौर पर लेना चाहिए। हल्का भोजन होना चाहिए और वो भी ताज़ा। थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहना चाहिए, जरूरत ना होने पर धूप में नहीं निकलना चाहिए। सूती कपड़े, ढीले कपड़े पहने, सिर को ढककर रखें, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। ये तमाम चीजें करें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, सुरक्षित रहें। खेलों की दुनिया से खबर यह है कि 25 साल के गुरिंदर वीर सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 100 मीटर की रेस 10.09 सेकंड में दौड़कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने अनिमेश कुजूर को पीछे छोड़ दिया। बीते शनिवार गुरविंदर सिंह ने राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के ऐतिहासिक दूसरे दिन पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में कमाल का प्रदर्शन किया और केवल 10.09 सेकंड में ये रेस पूरी कर ली। एशिया में इस सत्र का यह दूसरा सबसे तेज समय है। यह प्रतियोगिता गुरिंदर वीर और पूर्व राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अनिमेश के बीच 100 मीटर की दौड़ में सबसे तेज भारतीय धावक बनने का मुकाबला करने के लिए याद रखी जाएगी। अनिमेश पिछले साल बनाए गए 10.18 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ इस प्रतियोगिता के दावेदार थे, पर शुक्रवार को गुरविंदर वीर ने 10.1 सेकंड का रिकॉर्ड निकाला। अब दूसरे सेमीफाइनल में अनिमेश ने 10.15 सेकंड का समय निकाला और रिकॉर्ड फिर से अपने नाम कर दिया। इसके आगे ये हुआ, गुरविंदर वीर ने फाइनल में जीत हासिल की और 10.10 सेकंड का समय निकाला और सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाले भारतीय धावक बन गए। 10.09 सेकंड इस समय इस सत्र में अब तक किसी एशियाई द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे तेज समय है। मई में 19 वर्षीय जापानी धावक फुकुतो कोमोरो ने 10.08 सेकंड का रिकॉर्ड निकाला है। आपको बता दें कि 0.01 सेकंड का ही डिफरेंस है गुरिंदर वीर और फुकुतो कोमोरो के रिकॉर्ड में। ये कमाल की बात है। गुरविंदर वीर पंजाब से आते हैं, भारत के एलीट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं और फास्टेस्ट मैन इन इंडियन हिस्ट्री।

0: मारतंड नाम का अखबार निकला था और भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। हालांकि ये अखबार 6 महीने में बंद हो गया था, लेकिन हिंदी के पहले अखबार के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है और इसलिए 30 मई का दिन भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उदंत मारतंड शब्द का अर्थ है समाचार सूर्य या बाल सूर्य। 30 मई 1826 को कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में उदंत मारतंड शुरू हुआ था। इसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने निकाला था। आगे चलकर यह अखबार बंद हो गया, लेकिन सबसे जरूरी बात यह हुई कि इसने हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी थी। आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। अब मिलेंगे अगले हफ्ते।
1: जिज्ञासा।

0: सिस्टर्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट, तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो राइट? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल क्वेश्चन है ना वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।
2: जी, विविध भारती का मुंबई केंद्र है, FM 102.8 और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत, अरिजीत सिंह की आवाज में, AM तुराज के बोल हैं और संगीत शैल प्रतीश का।

जी, विविध भारती का मुंबई केंद्र है, एफएम 102.8 और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। कुछ ही पलों में होगा मराठी में समाचार, जिसे हम मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: डंकी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। इरशाद कामिल के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
3: लीजिए सुनिए एक विशेष सूचना। इन दिनों अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? प्यास न लगने पर भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। प्यास लगना शरीर में पानी की कमी का सही संकेत नहीं है। यात्रा के दौरान पीने का पानी साथ रखें। ORS का उपयोग करते रहें तथा नींबू पानी, छाछ, लस्सी, फलों का रस जैसे घरेलू पेय पदार्थ लें। तरबूज, खरबूज, संतरा, अंगूर, अनानास, खीरा, सलाद आदि अधिक पानी वाले फल, मौसमी फल और पत्ते खाते रहें। शरीर को ढक कर रखें। ढीले और हल्के रंग के सूती कपड़े पहने। धूप में निकलते समय छाता, टोपी,

कैप, तौलिया या सिर ढकने के पारंपरिक साधनों का उपयोग करें। बाहर जाते समय चप्पल या जूते अवश्य पहनें। सतर्क रहें, रेडियो सुनें, टीवी देखें, समाचार पत्र पढ़ें और स्थानीय मौसम की जानकारी लेते रहें। भारतीय मौसम विभाग IMD की वेबसाइट पर मौसम संबंधी अपडेट देखें। हवादार और ठंडी जगह पर रहें। दिन के समय विशेष रूप से धूप वाली दिशा की खिड़कियां और पर्दे बंद रखें। रात में ठंडी हवा के लिए खिड़कियों को खोलें। बाहर जाना हो तो सुबह या शाम का वक्त चुनें। बाहरी काम और गतिविधियां दिन के ठंडे समय में करें। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान बहुत अधिक हो जाए या पसीना आना बंद हो जाए तो तुरंत टोल फ्री नंबर 112 पर कॉल करें। ये थी आपके लिए विशेष सूचना।

भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे रोमी की आवाज में। शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था। विविध भारती से यह है कार्यक्रम चित्रलोक।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in।

0: निशुल्क कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी टेली लॉ ऍप किंवा www.tele-law.in या वेबसाइट वर किंवा टोल फ्री क्रमांक 1-4-4-5-4 वर संपर्क साधा।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत आप सुन रहे थे। कृष्णा कुमार और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म थी वेलकम टू सज्जनपुर।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद

शादी के साइड इफेक्ट्स, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे फरहान अख्तर की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरो गोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू

0: होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की

0: आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात

0: खेलों की चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। जौहर महमूद इन गोवा ये नाम फिल्म का है, इसी फिल्म का ये गाना है। मुकेश की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: घराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था। 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।

हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अनारकली फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल सी रामचंद्र का संगीत।

आनंद बख्शी का लिखा गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म थी आपकी कसम। विविध भारती से यह है कार्यक्रम आपके लिए।

0: ज्वेल थे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

रंगोली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के सभी श्रोताओं को दिलीप का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर।

23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले लगभग 3,500 जिंगल्स के लिए आवाज दी। क्रिकेट विश्व कप 1999 के दौरान भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए जोश ऑफ इंडिया गीत में भी उन्होंने गाया। उन्होंने संगीत में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। केके का कहना था कि गायक का चेहरा दिखने के बजाय उसका सुना जाना ज्यादा जरूरी है।

ये गीत काफी लोकप्रिय रहा। हालांकि बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से। उनके गीतों से युवा अपने आप को रिलेट कर पाते थे क्योंकि उनके गीतों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी महसूस कर पाते थे और भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते थे, जैसे कि ये गाना उन्हीं के लिए गाया गया हो।

1999 में उन्होंने अपना एक एल्बम लॉन्च किया पल, जिसका गीत यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है काफी लोकप्रिय रहा और स्कूल कॉलेज के लगभग हर फेयरवेल फंक्शंस का हिस्सा रहता था। इस गाने के बगैर कोई भी फेयरवेल फंक्शन अधूरा ही माना जाता था।

केके के चर्चित गानों की बात करें, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना आंखों में तेरी काफी लोकप्रिय हुए। काइट्स का जिंदगी दो पल की, जन्नत का गाना जरा सा, गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है।

उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया और उन्हें बचना ए हसीनो फिल्म के गाने खुदा जाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का स्क्रीन अवार्ड मिला।

के बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म भी करते थे और नेचर लवर भी थे। केके के कुछ अपने उसूल भी थे जिनसे वो समझौता नहीं करते थे। एक बार एक गाने को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें लगा कि गीत के बोल ठीक नहीं है और उनकी इस आपत्ति का सम्मान करते हुए गाने के बोल बदल दिए गए। अच्छे गायक की उनकी अपनी परिभाषा थी। के मानते थे कि अच्छा सिंगर वही है जो किसी संगीतकार के गाने को अपना बना के गा सके।

0: संगीतकार ललित पंडित ने कृष्ण कुमार कुन्नाथ के लिए अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
1: केके को पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी बहुत प्यार करती है, बहुत ही अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत दोस्त थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में, लाइफ में कभी कभी, और शोबिज मुकेश भट्ट जी की फिल्म में गाने गाए हैं उन्होंने सारे मेरे, जतिन ललित के भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज में एक यूथ को अट्रैक्ट करने की एक क्षमता थी और गाने में जो सुर पकड़ने की ताकत थी उनमें बहुत थी। और सबसे बड़ी बात है जो सिंगर में लोग ढूंढते हैं और जो कुदरत की तरफ से आती है वो एक वॉइस क्वालिटी। उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही यूथफुल वॉइस क्वालिटी थी। और वॉइस क्वालिटी का ऐसा होता है कि एज से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, वॉइस पुरानी नहीं होती आपकी, आपकी गायकी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, और वो केके में

के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बने, जिसके लिए वो खास तौर से जाने जाते थे। युवा दिलों की धड़कन बने और अपने आखिरी पलों में भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो युवाओं के साथ ही थे। 53 वर्ष की अवस्था में मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में कॉलेज के कॉन्सर्ट के बाद हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए।

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर। आलेख और स्वर दिलीप का, संपादन और प्रस्तुति तेजस्वी कांबले की।
1: आज के फनकार।

0: छाएगी प्रोग्राम थोड़ी ही देर में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि खूबसूरती ऊपर वाले की देन है। हर एक इंसान के नए नक्श बनाने वाले ने अपनी ही तरह से बनाए हैं, जो उस इंसान के व्यक्तित्व की पहचान है। सिर्फ सुंदर तीखे नए नक्श ही असली खूबसूरती नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं।
1: कहां से लाई हो जान।

किसी को पहली बार देखते हैं तो आपकी दो आंखें चार होती हैं सामने वाले की दो आंखों से। आंखों की

सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.go.in पर।

जरूर ढाएगा कोई महशर, जरूर फितना बर्पा करेगा तुम्हारा अटखेलियों से चलना, झुका के गर्दन उठा के आंचल। जी हाँ, बारी है चाल की। जहाँ उठना बैठना बात करना लोगों के मन को लुभाता है, वहीं चलना भी एक अदा है। ऐसी मतवाली चाल जिसे देखकर कोई तौबा।

खूबसूरती क्या है? देखा जाए तो हर चीज का नियमानुसार होना। किसी की आंखें छोटी होती हैं या बड़ी बड़ी होती हैं, किसी के होंठ पतले हैं या मोटे, लेकिन अदाएं, जी हाँ, अदाएं तो आपके बस में हैं, क्योंकि यही अदाएं देखकर एक शायर ने ये

0: तो दोस्तों ये था आज का छाया गीत। दीजिए रेनू बंसल को इजाजत। नमस्कार।
1: देखो टर मरे।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी।

0: शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: बोलूं क्या मैं? अरे बोल कन्हैया।
1: आज की

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये पहला जो गीत है अब्दुल्ला फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।